अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 12 जून 2026 शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:25 पर। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी मनाया जा रहा है।

उजाले से भरपूर होकर इस आत्मा इस मन को रोशन करके जीवन सफर को तय करना जरूरी है। इसी से धरती का रूप निखरेगा, यह धरती जन्नत बनेगी। इसी में ही सारी मानव जाति का कल्याण

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है दोस्ती और रिश्ता। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरने। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। कार्यक्रम लिखा और निर्देशित किया आरजे किरने ने।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरने। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का रेट्रो हिट्स है दोस्ती और रिश्ते स्पेशल। दोस्तों और अपनों के रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज हम उन्हीं रिश्ते के अनमोल जज्बात को महसूस करेंगे। जब दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है तो फासले और वक्त सब बेकार होता है।

दोस्ती में होती है ईमानदारी, इसमें दुनियादारी नहीं होती। दोस्ती एक राज है जो खुलता नहीं, ये वो दीपक है जो बुझता नहीं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था दोस्ती और रिश्ता। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। इस कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो छु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बगत।

0: आपने चुन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जानेमन, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई एक्टर अपने किरदार को असली बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? दी एक्ट्रेस आई सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं, उसने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का असली मतलब सिखाया था। वो फिल्म है 2 बीघा जमीन, जो 1953 में आई थी, और आज हम एक एक्टर के तौर पर जिस लेजेंड को स्टडी करने वाले हैं, वो है बलराज सहानी साहब। उनका अमर किरदार शंभू महतो। शंभू एक सीधा साधा किसान है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए कलकत्ता पहुंच जाता है और वहां वो रिक्शा चलाने लगता है। एक एक्टर के तौर पर हमें बलराज सहानी साहब से 3 चीजें सीखनी चाहिए। जी हाँ, 3 चीजें। पहली है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए बलराज सहानी साहब ने असल में, जी हाँ बिल्कुल असल में, कलकत्ता की सड़कों पर कई हफ्तों तक रिक्शा चलाया था। उन्होंने असली रिक्शे वालों के साथ समय बिताया कि वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, या रिक्शे वाले बीड़ी कैसे पीते हैं, उनके बात करने का लहजा सीखा। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि आपका किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट के पन्नों में नहीं होता है, वो असल जिंदगी में कहीं ना कहीं सांस ले रहा होता है, बस आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है। दूसरी सीख, फिजिकलिटी एंड एग्जॉशन। फिल्म में शंभू की जर्नी देखिए। गांव में वो एक स्वाभिमानी किसान है, उसकी चाल सीधी है, लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचता है, वहां की तपती सड़कों पर नंगे पैर रिक्शा खींचते हुए उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। हाफती भी सांसें, पसीने से तर बतर चेहरा और पैरों के छालों का दर्द। बलराज जी ने थकान की एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने उस थकान को महसूस किया है। आपको सीखना चाहिए कि आपके किरदार की परिस्थितियां उसके शरीर को कैसे बदलती हैं। और तीसरी बात, सुपर ऑब्जेक्टिव यानी कि किरदार का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब शंभू की बात करते हैं। उसका हर एक्शन उसके हर पसीने की बूंद के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो ये था कि उसे अपनी 2 बीघा जमीन वापस पानी थी। फिल्म का वो रिक्शा रेस वाला सीन याद है आपको, जहां शंभू की रेस एक दूसरे रिक्शे वाले से होती है, बलराज जी की दौड़, उनका हाफना और अंत में सड़क पर गिर जाना, वो इतना असली है कि दर्शक के तौर पर आपकी अपनी सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है, सिर्फ एक इंसान के सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भाई लोग, बलराज साहनी जी ने हमें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, ये अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में डाल देने की कला है। जी, उसी का नाम है एक्टिंग। अब समय है आज के होमवर्क का। उसमें ये करना है कि आपने अपने पसंद का कोई भी डायलॉग लेना है जिसमें 4-5 लाइनें हो, उसको अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े रहकर दौड़िए, खूब तेज दौड़िए या फिर जंपिंग जैक कीजिए, और जब आप पूरी तरीके से थक जाएं, हाफ जाएं, तो तुरंत कैमरा ऑन कीजिए और परफॉर्म करना शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप हाफ गए थे तो आपके बोलने के अंदाज में क्या क्या चेंज आया, क्या क्या बदलाव आया, इसी बदलाव को नोट डाउन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या बदलाव महसूस किया। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मास्टर क्लास के साथ।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, खुशामदीद, मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है।

शायद समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तस्वुर ज़हनो दिल से कौंसों दूर। बेशक रुत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

जो रुक गई कदम, तो शायद बहक गई भटक गई, ये रास्ते आखिर जाती कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो, पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए जो कभी पीछे छूट गए थे, वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे, लेकिन नई परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरी सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज गूंजती रहती है और कहती है।

आपके लिए फौजी भाइयों मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहां तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

भाई आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या कहें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। खैर, वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है। दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं, वही घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है कि

लेकिन आप तो अपने दायित्व को भलीभांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहले में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल क्या कह रहा होता है। उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

आप उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

और देखते ही देखते छुट्टी के दिन हवा के झोंकों की तरह निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल इन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है। अब तो समय भी देरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हमें भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे। कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं उस पथ

हो हो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने भी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो हम सफर मेरे शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है? हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार मैं आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056641010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुफ्तगू। और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे नरेश शर्मा, और आज के मेहमान है रंगकर्मी हरियाणवी कलाकार शिव किरमच।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, एहसास अपनेपन का। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी कला मंच के एक मंझे हुए कलाकार श्री शिव किरमच जी। शिव किरमच जी उभरते हुए विख्यात गायक सिद्धू किरमच के पिता हैं, जिनकी एक एल्बम अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे नैना नाम से। ये एल्बम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, और इन्हीं सिद्धू किरमच जी के पिता शिव किरमच ये स्वयं भी एक कलाकार हैं, या यूं कहा जाए कि कलाकारों का परिवार है। ये आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी, रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और हम सबकी खुशकिस्मती है कि हरियाणी रंगमंच को एक अलग पहचान देने वाले, जिन्होंने अपनी कला से हरियाणी रंगमंच पर एक अलग छाप छोड़ी है, वो कलाकार आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका शिव किरमच मैंने आपको नाम बताया। आइए जानते हैं इनकी जीवन के कुछ पहलू और इनके दिल की बात हम आज इन्हीं से जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या है शिव किरमच जी की कहानी, सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो शिव जी, आप ये बताइए कि कला के क्षेत्र में आपका रुझान किन किन कलाओं में है?
2: जी मैं बताऊं, कला में रुझान मेरा बचपन से ही था, लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला, कद मेरा छोटा, और मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। लेकिन जैसे जैसे मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ओर गया, मेरा ये रुझान उभरने लगा, निखरने लगा, और मैं कोशिश करने लगा।
1: मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, जो दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि शिव किरमच जी अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात में अब ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने जा रहे हैं कला क्षेत्र के बीच में। जैसा कि इन्होंने बताया कि कद काठी छोटी होने की वजह से ये मतलब एकदम से समर्पित तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, जितना हमने इनको जाना और पहचाना है, आप इनके बारे में इतना जरूर कह सकते हैं कि ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और देखते हैं कहां कहां इन्होंने बड़े धमाल मचाए हैं, और भविष्य में कला के प्रति इनकी क्या क्या और योजनाएं हैं।
2: जी मैं बताऊं सर आपको, मैं झिझकता था मंच पे जाते हुए भी। जैसे मैंने पहले MA किया, उसके बाद मैंने BEd किया। BEd में मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदर मन में रहता था कि कुछ मैं मंच पे बोलूं, और मैं फिर कोशिश करने लगा, कभी चुटकुले सुना दिए, कभी कोई तुकबंदी सुना दी, और धीरे धीरे ये बात गंभीर रूप लेने लगी। और संयोग ही कहूँ, जैसे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था करनाल में, तो बहुत सी फिल्में देखता था, फिल्में देखकर एक एक्टिंग का जुनून सवार होता था, मैं कैसे करूँ, लेकिन मैं कर तो पता नहीं था, लेकिन मैं करने की कोशिश करता था। संयोग से 2009 में कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर नाम की एक संस्था खुली, और वहां मुझे एक छोटा सा करेक्टर करने का मौका मिला। नाटक था जिस लाहौर ने देखा, जम्याई ने। कुछ लोगों ने पसंद किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, और धीरे धीरे मैं 2009 से और आज तक कंटिन्यू नाटकों में काम कर रहा हूं, चाहे वो सैया भाई कोतवाल हो या जिस लाहौर ने देखा या खबरदार, यानी कि बहुत से नाटक, और इससे मेरा व्यक्तित्व भी निखरने लगा। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, वो मुझे जानने लगे, पहचानने लगे।
1: वाह जी, तो ये तो इनकी कला का एक पहलू रहा है जो ये बता रहे हैं, एक्टिंग जी। एक्टिंग के विषय में जी। इसके साथ साथ में संगीत में भी आपकी रुचि रही है क्या?
2: संगीत मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैंने कुछ गीत लिखे हैं, हरियाणवी में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, तो ये रुचि भी तुकबंदी करने की। जैसे मैं बीए फाइनल में हुआ, फिर एमए में हुआ, तब मेरे अंदर था ये भी कि मैं कुछ कविताएं लिखूं। और आज आप सबके स्नेह से मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जिसमें 50 कविताएं शामिल हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि जो जो बातें मैंने आज से 40 साल पहले सोची थी, मेरा काव्य संग्रह हो, मैं नाटकों में काम करूं, मैं फिल्मों में काम करूं, ये सब मेरे सपने धीरे धीरे प्रभु की कृपा से पूरे होते चले गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका अभी नाटक संग्रह प्रकाशित हुआ है, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने किसी कविता की चंद लाइनें सुनाना पसंद करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा, और ये मुझे पसंद भी है और मुंह जबानी मेरे याद भी है। जब मैं 92 में बीएड का विद्यार्थी था तब मैंने ये तुकबंदी की थी, वही कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ।
1: जी जी।
2: शीर्षक है संभलो संभलो, संभलो संभलो मेरे अजीज युवाओं, क्यों पांव कुल्हाड़ी मार रहे, पढ़कर बुरे व्यसनों में क्यों जीवन भाग उजाड़ रहे। आज पढ़ते ही नजर कुछ युवाओं पे मेरा मस्तक झुक जाता है, देख इनके दुष्कर्म दिल भी दहल जाता है। नैतिक पतन तो कर चुके, क्यों शारीरिक पतन भी करते हो, पीकर मदिरा लेकर ड्रग्स क्यों जीवन कलंकित करते हो। चरित्र का तो मैं नाम नहीं, क्यों सभ्यता को भी छोड़ दिया, माता पिता व गुरुजनों से तुमने क्यों नाता तोड़ लिया। कहता है शिव संभल जाओ, कहता है शिव संभल जाओ, वरना फिर पछताओगे, दो दिन की मौज है प्यारे, हरदम रोते पाओगे, हरदम रोते।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
2: धन्यवाद।
1: तो ये जो श्रोताओं, आप कलम का जौहर आपकी नजर के बीच में आया शिव किरमिश जी का, समझते हैं आपके कलाकार अपने मन की भावनाओं को अपनी कलम के मार्फत हम सबके बीच में रखते हैं। और इन्होंने भी तो बहुत बात अच्छी बात कही है कि ये जो आजकल एक चलन सा चल पड़ा है नशों का, नशों के विरुद्ध आगाह किया है, बहुत सुंदर रूप से अपने संदेश को देने की इन्होंने कोशिश की है। समय रेडियो के ऊपर अक्सर कम होता है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय के बीच में इनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जितना जान पाए उस जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। तो एक पहलू और भी जिंदगी का होता है
2: जी।
1: वो होता है कि एक तो आपने बताया जिस तरह से कि अभी ड्रग्स की बात
2: जी,
1: यानी जिसको हम नशे के ऊपर कह सकते हैं
2: जी,
1: एक है प्यार मोहब्बत की बात
2: जी।
1: तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ में क्या कोई ऐसी अनहोनी हुई?
2: अनहोनी की बताऊं, ये मन में ख्यालात तो सबके ही आते हैं, जब मैं जैसे 11वीं 12वीं का विद्यार्थी रहा, 13वीं 14वीं का विद्यार्थी रहा, मन में एक ऐसी इच्छा तो होती है इस तरह की एक कहानी बने। और कविताएं तभी लिखी जाती हैं, तभी मन के भाव भी व्यक्त हो पाते हैं। तो लेकिन मैं शक्ल सूरत का तो इतना सुंदर सा था नहीं, ऐसा ही था, काम चलाऊ सा था, तो फिर ये बस ख्यालों में ही ये पुलाव पकती रही। और हो सकता है जिंदगी में थोड़ा बहुत हुआ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
1: नहीं, आप इसको स्पष्ट रूप में बताइए ना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है नहीं। जब आपके साथ में हुआ तब आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है, तब आप ये कहिए कि हाँ जिंदगी के बीच में मेरे साथ में हाँ, प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला, कुछ सीढ़ियां आपने चढ़ी।
2: हाँ, चढ़ी हूँ, ये पढ़ते टाइम जरूर ऐसी।
1: क्या आज भी धड़कता है?
2: हाँ, कल्पना में तो 100% धड़कता है, और तभी मैं ये जैसे गीत लिखता हूँ, तो कल्पना भी तभी अच्छी कर पाता हूँ जब वो ख्याल आते हैं, इस तरह के कुछ जो अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पे फिर कुछ पंक्तियां गढ़ी जाती हैं।
1: श्रोताओं, मेरी शुभकामनाएं शिव किरमिश जी के साथ में हैं, क्योंकि जो बातें अभी आप किरमिश जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि अभी भी इनका दिल किसी और के लिए धड़कता है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार सिर्फ आप लोग ही नहीं सुन रहे, शिव किरमिश जी के परिवार वाले भी सुन रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले को कह दिया कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सर, हम चलते हैं एक दूसरा रुख आपके जीवन का, जो दूसरा पहलू है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं
2: जी।
1: सुना है आप एक बहुत बहुरंगी बहुमुखी थिएटर के कलाकार भी, क्या ये सच है?
2: जी, ये भी संयोग ही कहूं सर, 2009 में जैसे वहाँ हरियाणा कला परिषद का एक कार्यालय या एक यूं कहूँ एक थिएटर का एक ऑफिस वहाँ खुला, तो किसी ने, एक डायरेक्टर थे वीरेंद्र जी, तो वो कुछ चयन कर रहे थे, ये इसकी नायिका रहेगी, ये नायक रहेगा, और मैं वैसे ही दर्शकों में बैठा था, तो मेरी शक्ल सूरत देख के उन्होंने अंदाजा लगाया, अलीमुद्दीन एक चाय वाले का करेक्टर था, पूछने लगे भाई शिव भाई तू कर लेगा? अब मेरे मन में तो अंदर तड़प थी कि कुछ नया करूं, और मैंने कह दिया हाँ, वो तो मेरे मुझसे रहा नहीं था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने 5-6 महीने रिहर्सल करवाई, कहने लगे भाई शिव कुमार आपके बस की बात नहीं है, ये आप चले जाओ, आप तो शर्माते, वो तो यहाँ तो लड़कियों से मिलना भी पड़ेगा, गले भी लगना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल काम है, मैं वैसे भी अध्यापक हूँ और मुझे थोड़ा बुरा सा लगेगा, लोग भी क्या कहेंगे, लेकिन मेरे अंदर था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, और सीखते सीखते वो पहला ही नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या और जमया ही नहीं, वो पूरे भारत में मंचित हुआ, और पूरा चाहे वो इलाहाबाद, उदयपुर, शिमला, चंडीगढ़, पटियाला और हरियाणा के शहर करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, और वो पूरा हिट होता चला गया, और मुझे भी फिर थोड़ा सा नाम, लोग कहने लगे भाई ये जचता है बंदा अलीमुद्दीन के किरदार में, और इस तरह मेरी जो भावनाएं हैं वो और उफनती गई, और मैं फिर अगले नाटक में, और आज कुरुक्षेत्र में मतलब मैं ये निसंकोच कह सकता हूँ सबसे ज्यादा नाटक मैंने किए हैं, अभिनय मैंने किया है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो एक नाटक जिसका शीर्षक था जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ।
2: नहीं नहीं, सीखने का मतलब सर कि मैं अभिनय सीख जाऊंगा और इनसे भी मैं थोड़ा खुल के बात करने लगूंगा। पहले 1 साल तो मैं बहुत कम ही करता था, फिर वो मैंने रिकॉर्ड भी सारे तोड़े, फिर मैं बातें भी खूब करने लगा।
1: देखिए, ये सिर्फ जो बातचीत मैं आपसे कर रहा था, ये अपने श्रोताओं को जो बात बता रहा था वो सिर्फ एक मनोरंजन मात्र के लिए थी, वरना शिव किरमिच जी एक बहुत मर्यादित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे मन में इनके लिए विशेष बहुत ही बहुत सम्मान है। आप हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों के लिए इतनी बातें कह रहे हैं, हम देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है वो जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि नाटक, आपने बताया कि नाटक जैसा कि जिस लाहौर में वेख्या वो जमया ही नहीं, आप ये बताइए कि नाटक ने आपके जीवन के बीच में क्या परिवर्तन ला के दिया है?
2: बहुत बड़ा परिवर्तन कहूंगा इन नाटकों से, क्योंकि मेरा जो व्यक्तित्व था वो ऐसा ही था, काम चलाओ, मुझे मतलब एक अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स रहता था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, मेरी हिंदी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगी, इन सब बातों का निवारण हुआ नाटक से। और अब मैं सच बताऊं, कहीं गाड़ी में डीजल भी डलवा रहा होता हूं, लोग मुझे जानते हैं, सर आप तो वो नहीं हो कल टीवी पे आ रहे थे, मैंने कहा हाँ सर आपका तो मैंने अखबार में फोटो देखा था, आप सैया भाई कोतवाल में कोतवाल बने हुए थे, और इतना अच्छा लगता है। और स्कूल की मैं बताऊं, चाहे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी या और जितने भी अधिकारी, वो सब मुझे मतलब एक बड़े रूप में देखते थे, भाई ये अध्यापक प्राध्यापक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रंगमंच का खिलाड़ी भी है, ये मंच संचालन भी, क्योंकि मेरी झिझक वो सब टूट चुकी थी, इमरजेंसी में मैं मंच संचालन भी करता, मैं कविताएं भी सुनाता, चुटकुले भी सुनाता, सब काम मैं करने लगा।
0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं भारत सोपोरी आज एक बार फिर लाइव हूँ रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं और आप हमारे साथ जुड़ेंगे आज 11:30 बजे, और आपके लिए ये जानकारी इसलिए पहले लेके आया हूँ, अभी इस समय समय है 10:47 पर, आप सभी श्रोताओं को जो हमें फेसबुक पेज पर देखते हैं और कमेंट करते हैं, और साथ में हमारे सामुदायिक रेडियो रेडियो वितस्ता पर भी जो लोग इस समय श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी की जानकारी उन सभी की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज यानी 12 जून 2026 को 11:30 बजे हमारे जो शो हमने पिछले हफ्ते किया था जिसका नाम है भगवद गीता जीवन का आधार, इसका एपिसोड 2 आज हम ला रहे हैं 11:30 बजे। और इस शो में, इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, इस मंच पर हम बात करते हैं हमारे जो धर्म ग्रंथ गीता है उसके बारे में। उसके लिए हमारे देश में कार्यरत है गीता परिवार। गीता परिवार के अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने शो किया था और उस शो में हमने कोशिश की, हम डॉक्टर आशु गोयल जी को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए जिनके हमने उत्तर ढूंढने की कोशिश की। कुछ कॉल्स भी हमने ली और कॉल्स किसी कारणवश हम बाद में नहीं ले पाए, उसका विकल्प आज हमने ढूंढा है और हमने आपके लिए एक अलग नंबर आज दिया है, आप उस पर कॉल जरूर करें। कॉल आप तब करें जब डॉक्टर आशु गोयल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी पूरी कोशिश है उनकी व्यस्तता के बाद भी हम उनको कुछ समय के लिए जोड़ेंगे। कार्यक्रम जब शुरू होगा, मेरे साथ होंगे आज के जो विशेष मेहमान होंगे, जो स्पीकर होंगे, वो होंगे सुश्री रूपल शुक्ला जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है गीता परिवार के, और पूरा जीवन उन्होंने इसी के लिए समर्पित किया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। उनके साथ हम आज विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि गीता हमारे जीवन में कौन से चेंजेस ला सकती है और कौन से समस्याओं का समाधान कर सकती है, हम उनसे प्रश्न करेंगे। आप भी अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो आप जरूर प्रश्न करें, और उसके लिए हमने नीचे टिकर में अपना जो नंबर है वो दिया है, पर ये नंबर पर आप कॉल करेंगे 11:30 के बाद जब शो शुरू होगा। मैं इसलिए पहले आपके लिए यहां पर जानकारी देने आया हूं ताकि 11:30 से 12:30 बजे तक आप हमारे इस शो के साथ जुड़िए, आप अपने कमेंट्स करिए। पिछले शो में जो कुछ कमियां रही थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने उन कमियों को ठीक कर दिया है। आपकी बात भी हम सुनेंगे, आपके कमेंट्स भी लेंगे और आपके कमेंट्स हम स्क्रीन पर भी शो करेंगे, और अगर आपका कॉल आता है तो आपकी कॉल भी हम आज ले लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सार्थक ये शो होगा और ये कार्यक्रम हम 11:30 आज शुरू करेंगे। इस समय 10:50 हुए हैं, बस केवल ये जानकारी देने के लिए आया था आपको। फेसबुक पेज पर और साथ में रेडियो वितस्ता पर भी सभी श्रोताओं को बताने के लिए कि 11:30 से ये शो 7 के साथ हमारे फेसबुक पेज पर लाइव होगा और अलग अलग लोग इसको शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। और साथ में ये लाइव रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर भी लाइव होगा जो अंबाला छावनी से प्रसारण करता है। फ्रीक्वेंसी 90.0 पर इसको सुना जा सकता है अंबाला में, और मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व में इसको सुना जा सकता है, इस आवाज को सुना जा सकता है। और हमारा उसके लिए एड्रेस है webplayer.radiovitasta.com, या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं radiovitasta.com पर। radiovitasta.com जो हमारी वेबसाइट है वही आपका रेडियो भी है, वहां पर हमने रेडियो प्लेयर रखा हुआ है तो आप उसको प्ले करके इस आवाज को सुन सकते हैं और हमारे अलग अलग कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो 6:00 बजे से 9:00 बजे तक निरंतर रहते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप 11:30 आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, भगवद गीता जीवन का आधार एपिसोड 2 हमारे साथ होंगे। मुख्य तौर पर जो आज वक्ता होंगे वो होंगे सुश्री रूपल शुक्ला, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर गीता परिवार की, और साथ में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर आशु गोयल जी को भी जोड़ने के लिए जो इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, हम कोशिश करेंगे उनको भी जोड़ेंगे। अगर उनके पास समय मिला तो जरूर हम उनको जोड़ेंगे, और अगर आपने कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं जो टिकर पर नंबर चल रहा है। साथ में हमारे साथ होंगी मिसेस मीनाक्षी गुप्ता जो प्रभारी है उत्तराखंड गीता परिवार की, और साथ में जम्मू कश्मीर गीता परिवार के संयोजक भास्कर दास भी हमारे साथ इस शो में होंगे। अभी मैं आपसे लूंगा इजाजत और इसी जगह पर इसी तरीके से और इसी वेशभूषा में और इसी आवाज से मैं आपसे जुड़ूंगा 11:30। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुप्तगु और आज चर्चा हो रही है शिव किरमच जी से, जो हरियाणवी कलाकार और रंगकर्मी हैं।
1: मेरे गांव में एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अब वो नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे क्लास फेलो थे वो, लेकिन वो मुझे चाहते थे कि मैं कुछ सीखता रहूं, ऊपर उठता रहूं। वो अब नहीं है, उनके लिए तो मैं अक्सर यही याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहा।
2: तो श्रोताओ, हम जहां पर आज शिव किरमच जी ने हरियाणा की संस्कृति को इतना कुछ दिया है, हम आज रेडियो विदस्ता की तरफ से शिव किरमच जी के लिए समर्पित करते हैं किशोर कुमार जी के ये गीत, जो इनके पसंदीदा गीत हैं। और इन्हीं गीतों के साथ में मैं आपको छोड़े चलता हूं रेडियो विदस्ता के इस परिवार से, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूं शिव किरमच जी का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत की, कुछ अपने दिल की बातें कहीं, कुछ छुपा भी ली, जो हम मौका लगने के ऊपर फिर किसी और कार्यक्रम के बीच में इनसे ज़रूर सुनेंगे। कोशिश करेंगे इनके दिल तक दस्तक देने की, क्योंकि जब तक दिल तक दस्तक नहीं होती ना, तब तक बात पूरी निकल नहीं पाती। तो आज अब इस मोड़ के ऊपर इन गीतों के साथ ही अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगा आपको किसी और प्रोग्राम के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हेलो, कौन बोल रहे हैं जी? जी, कार्यक्रम 11:30 बजे शुरू होने वाला है और आप सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहूंगा कि कॉल करें और 11:30 बजे हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जय श्री कृष्ण सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज हम एक बार फिर लाइव है फेसबुक पेज रेडियो वितस्ता के और आज शुक्रवार है 12 जून 2026। और पिछले हफ्ते हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है भगवद गीता जीवन का आधार। आज हम इसका दूसरा एपिसोड लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में गीता परिवार के बारे में बात की, हमारे धर्म ग्रंथ गीता जी के बारे में बात की और हमने बात की थी डॉक्टर आशु गोयल जी के साथ, हमारे साथ मीनाक्षी दीदी थी और भास्कर जी थे। आज हमारे साथ एक और बहुत ही एक्सपर्ट एनर्जेटिक व्यक्ति है जो हम आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी मन की बात भी जानेंगे। उन्होंने गीता परिवार के लिए और इस परिवार के लिए अपने जीवन को इस युवा अवस्था में ही समर्पित किया और इतना समर्पित किया कि हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहेंगे, कोशिश करेंगे जब तक आप चाहेंगे तब तक हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को 11:30 बजे शुरू होता है और उम्मीद करते हैं कि हम 1 घंटे तक इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, आप चाहेंगे तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। कारण उसका ये है कि ये कार्यक्रम इस समय लाइव है रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज पर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। मैं सभी श्रोताओं को सभी दर्शकों को जरूर अनुरोध करूंगा कि वो इस स्ट्रीमिंग को लाइव करें और लाइव करने से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ये जो हमारी बात है पहुंचेगी। और साथ में ये स्ट्रीमिंग इस समय लाइव है हरियाणा अंबाला छावनी से प्रसारित होने वाला सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। जहां तक वितस्ता की बात है, जो वितस्ता का प्रवाह है उसका जो स्रोत है वो कश्मीर में है और कश्मीर में जो वितस्ता है वो प्रवाह करती है और हमारी जीवन रेखा है। जो ये सामुदायिक रेडियो है ये आपके पास पहुंच रहा है वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से। वेथ और वितस्ता एक ही शब्द है, वेथ कश्मीरी में है और वितस्ता संस्कृत में है और ये हमारी जीवन की रूपरेखा है, जीवन की जीवन का प्रवाह है। हम चाहते हैं जब 36 वर्ष पहले हमने अपने घर बार छोड़ के विस्थापन किया था तब से आज तक जैसे वितस्ता का प्रवाह जारी है ऐसे ही कश्मीर का प्रवाह हमारे भीतर जारी है। और जिस धर्म जिस के लिए हमने घर छोड़ा था और आज वो बारी आई है कि हम उस हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की जो बेस है उसकी हम बात करें, खास करके गीता उपदेश की बात करें, गीता जी की बात करें, गीता परिवार की बात करें, क्योंकि मैं इस समय आप सभी से रूबरू हूं अंबाला छावनी से जो कुरुक्षेत्र से केवल 40 मीटर दूर है और जबकि कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश हुआ है और उस जगह पर मैं खुशनसीब हूं, मैं कई बार गया हूं और मैं दिल से बहुत नजदीक हूं इसके साथ कि कौन सा ऐसा मौका हो कि हम अपने देशवासियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये बात करें ताकि हम आप तक इन बातों को पहुंचाए जो हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आए। तो आइए, मेरी बातें तो चलती रहेंगी, अगर मुझे कोई रोकेगा नहीं मैं तो 24 घंटे बोलता रहूंगा। खैर, सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। हमने टिकर में आज एक नंबर दिया है तो आप चाहे आज के मेहमानों से आप प्रश्न कर सकते हैं, पर आपसे अनुरोध है कि आप जब प्रश्न करें ऐसी जगह पर बैठें जहां पर कोई नॉइज ना हो ताकि आपकी बात हमारे तक साफ सुथरी पहुंचे, ताकि आप हमारे मेहमानों से सीधी बात कर सकते हैं। मैं अपने रेडियो के श्रोताओं से भी अनुरोध करूंगा अगर वो भी कुछ पूछना चाहेंगे तो वो भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर आप सभी को पता है, एक बार फिर बता देता हूं, 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब आइए आज के जो हमारे जो स्पीकर है, जो आज हमारे मुख्य अतिथि है, उनको हम आमंत्रण देते हैं और साथ में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर आशु गोयल जी को भी जोड़ेंगे जब उनके पास समय हो। आज वो बहुत व्यस्त है, हम कोशिश करेंगे अगर वो कुछ समय के लिए भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। फिलहाल हम स्वागत करते हैं आज के मुख्य वक्ता रूपल शुक्ल जी का। रूपल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद जी।
0: भास्कर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उम्मीद करूंगा मीनाक्षी दीदी भी हमारे साथ कुछ समय के बाद जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं रूपल जी के बारे में कुछ शब्द मैंने तैयार किए हैं, मैं कोशिश करना चाहूंगा कि रूपल जी के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। जो रूपल जी हैं, सुश्री रूपल शुक्ल जी, जो गीता वृत्ति है, गीता प्रवीण है और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है गीता परिवार की, लर्न गीता की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और अंतर्राष्ट्रीय संयोजिका भी है। 12वीं तक इन्होंने साइंस पढ़ी है और संस्कृत में रुचि होने के कारण डॉक्टर आशु गोयल जी के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और संस्कृत में आज अभी ये पीएचडी भी कर रही हैं। अद्वैत वेदांत में आचार्य करने वाली भारतवर्ष में संभवतः गिनी चुनी कन्याओं में रूपल शुक्ल जी, मैं तो कहूंगा पहली होंगी। और उम्मीद करेंगे कि आप से हम इस कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे और चाहेंगे कि आपके बारे में हम जानेंगे और हमारे जो कमेंट्स आएंगे वो भी मैं साथ साथ शो करता रहूंगा अपने स्क्रीन पर। और ज्योति कौल जी जय श्री कृष्णा लिख रही हैं और ऐसे और भी कमेंट्स हमारे पास आते रहेंगे तो हमारे श्रोता जो है वो उनसे देखते भी रहेंगे और बात करते भी रहेंगे। सबसे पहले रूपल जी आपका एक बार फिर अभिनंदन, स्वागत हमारे फेसबुक पेज रेडियो वितस्ता पर और हमारे सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के सामुदायिक रेडियो पर भी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी रूपल जी, रूपल जी आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है आप अनम्यूट हो जाइए। और मैंने आपसे ये पूछा कि आपको हमारे इस मंच पर आपको आके कैसा लग रहा है। रूपल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है?

0: रूपल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
1: हाँ, अभी मिल रही है
0: जी। जी,
1: कुछ नेटवर्क इशू शायद बीच में आया था।
0: कोई बात नहीं, हम में जब भी कोई कार्य करते हैं समस्याएं हमेशा साथ होती है, उन समस्याओं के भीतर ही हमें अपना रास्ता बनाना होता है। आपका पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको आज इस पटल पर, इस मंच पर जुड़ के कैसा लग रहा है?
1: बहुत ज्यादा आनंद हो रहा है भरत भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। हम आज तक ये मीडिया पर, सारे न्यूज चैनल्स पर, एफएम्स पर, जितने भी सनसनीखेज खबरें सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सुनते सुनते कुछ मसाला दर्शकों को मिले और वो देखने आए, यही उद्देश्य सभी का रहता है। लेकिन उस मसाले से हटकर लोगों को जीवन की कोई दिशा मिल सके, लोग अपने शास्त्रों को जान सके, भगवत गीता को जान सके, इस उद्देश्य के साथ जो ये भगवत गीता जीवन का आधार एपिसोड आपने आरंभ किया है, इसके लिए मैं रेडियो विकासता टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ऐसे कुछ रेडियो हमारे होने चाहिए, ऐसे कुछ चैनल्स भी हमारे होने चाहिए जो समाज को कुछ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की ओर ले जा सके, लोगों को कुछ दिशा दर्शन कर सके, लोगों को कुछ अच्छा बतला सके, लोगों को कुछ काम की बात जो उनके जीवन के लिए कल्याणकारी हो ऐसी बतला सके। तो ऐसा एपिसोड आपने आरंभ किया, इसके लिए आपका भी अभिनंदन है। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं उनको भी इससे एक शिक्षा मिलती है, इससे एक उद्देश्य मिलता है कि जीवन में हम लोग कैसे नेगेटिविटी को छोड़ करके, जिससे लोग जुड़ेंगे ऐसे कार्यक्रम ना करके, जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको लाभ होगा, ऐसे कुछ कार्यक्रमों का आरंभ करना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और हम आपसे बात करते हुए हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे देशवासी है, खास करके देश तब बनता है जब युवाओं की सकारात्मक सोच होती है, और हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से युवाओं तक पहुंचना है, जहां पर उनकी सोच पर हम सकारात्मक बदलाव लेके आए। तो हमें बहुत खुशी है आपसे आज बात करते हुए। भास्कर जी, आपका भी एक बार अभिनंदन, स्वागत। आप बताइए, आप जम्मू कश्मीर में जो गीता परिवार के साथ जुड़े हैं, संयोजक है, आपको कितना सही और कितना मुश्किल लगता है ये काम करना?
2: नमस्कार भारत जी और रूपल देवी और साहब के सारे जो दर्शक है उनको, क्योंकि आपने भी बताया कि जो भी कार्य हम कर लेते हैं उसमें कठिनाइयां तो रहती हैं, पर जो हम कार्य कर लेते हैं भगवत गीता का प्रचार का, तो उसमें हमारे भगवान कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं। जैसे हमारे मार्गदर्शक हैं प्रबल दीदी हैं, आशु भैया स्वामी जी हैं, तो वो काम तो कठिनाइयां तो चलती रहती हैं, बट हमारा प्रयास जारी, हम तो रुके नहीं हैं। तो आई साल पहले जो स्थिति जम्मू कश्मीर की थी, खासकर जम्मू डिवीजन की जो थी, गीता परिवार के प्रचार की और जो उसमें लोगों के जुड़ने की, आज उसमें बहुत ही सुधार हुआ है। तो जैसे लास्ट पिछली एपिसोड में आशु भैया ने बोला कि 6,000 से ज्यादा साधक गीता परिवार से जुड़े हैं, तो ये भगवान की दया, और हम जो परिश्रम कर लेते हैं, जो दायित्व हमको मिला है उसके कारण, शायद हम तो नहीं मानते बट हम सोचते कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो भगवान भी उसके साथ दे रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज भी आप तक अच्छे से पहुंच रही होंगी, और सोशल मीडिया पर लोग हमारे पास कमेंट्स भी भेज रहे हैं। रूपल दीदी, आपसे एक खास बात पूछना चाहता हूं कि जो आपके जीवन के साथ और हम सबके भारतवासियों के जीवन के साथ जुड़ी है, और वो ये है कि गीता वृत्ति और गीता प्रवीण, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए, और साथ में जब ये आपको प्राप्त हुई कितनी संतुष्टि मिली और किन करकमलों से आप तक ये पहुंची?
1: प्रश्न बहुत अच्छा है, और जब आपने यह प्रश्न पूछा तो सारी की सारी मेमोरीज में रिकलेक्ट करने लग गई, मुझे वो सारे क्षण याद आ गए, वो इतनी आनंदमयी सारी स्मृतियां ताजा हो गई। ये गीता वृत्ति हमारे गीता परिवार में एक एग्जाम पैटर्न है, जिसमें L1 से L4 तक सभी लोग गीता सीखते हैं। 3 अध्याय होने के बाद कंठस्थीकरण की एक परीक्षा होती है, जो कि पूर्णतः वैकल्पिक है, कोई अनिवार्य नहीं होती कि आप L2 की परीक्षा देने के बाद ही L3 में जा सकेंगे। तो 3 अध्याय कंठस्थीकरण की जो परीक्षा देते हैं उनको उपाधि मिलती है गीता जिज्ञासु की। 6 अध्याय कंठस्थ करने पर गीता पाठक, 12 अध्याय कंठस्थ करने पर गीता पथिक, और 18 अध्याय कंठस्थ करने पर गीता वृत्ति की उपाधि मिलती है। तो जो गीता परिवार में पहली गीतावृत्ति की परीक्षा लर्न गीता आरंभ होने के पहले आयोजित की गई थी महाराष्ट्र में, उसमें हम सभी ने संपूर्ण गीता कंठस्थ करके परीक्षा देकर गीतावृत्ति की उपाधि प्राप्त की थी। लर्न गीता कार्यक्रम आरंभ होने के बाद जब हम गीता सिखाने लग गए, यह प्रकल्प इतना धीरे धीरे बड़ा होता गया, इतने सारे हजारों लाखों लोग जुड़ने लगे, तो इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं देने के लिए संचालक रूप में इसको पूरा संभालने के लिए और सभी का बड़ों का मार्गदर्शन मिलता था, उस मार्गदर्शन में भी सारे कार्य को करने के लिए इतने अधिक लोगों को जोड़ने के लिए गीता प्रवीण की उपाधि हमको हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज के कर कमलों से प्राप्त हुई, जो कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे गुरुदेव हैं और उनके कर कमलों से यह उपाधि प्राप्त करके हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, और जो उपाधि हमको मिली उस पर हम खड़े उतर सके और उससे उत्साह प्राप्त करके हम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहे, ऐसा हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं सदैव।
0: आपने मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दिल से ये बात कही, और आपके जो पहले पायदान हम जिसको कहेंगे जिंदगी का, उस तक हम पहुंचे और वहां से हमने शुरुआत की, और आप युवाओं के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप जब गीता वृत्ति हुई, गीता प्रवीण हुई, तो कितनी जिम्मेदारी और कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी बनी कि आप ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खास करके लर्न गीता के साथ या गीता जी के साथ जोड़े।
1: आज के युवा में असीमित ऊर्जा है, उनके पास खूब टैलेंट है, लेकिन और सरकार की तरफ से भी उनके लिए स्टार्टअप्स के और इतने सारे उपाय नित्य निरंतर हम सभी को प्राप्त होते रहते हैं, इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमको प्राप्त होता है, सामने खड़ा होता है कि जितने ऑप्शंस पहले नहीं थे उतने उपलब्ध होने पर भी आज का युवा हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज दिखता है, क्योंकि उनके पास एक डायरेक्शन नहीं होता है। और डायरेक्शन का जो टूल है वो है हमारी भगवत गीता। जब भगवत गीता हम पढ़ना आरंभ करते हैं, भगवत गीता के साथ हम जुड़ते हैं और भगवत गीता हमको मिल जाती है, उसके मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, तो हमारे जीवन के कंफ्यूजन्स दूर होते हैं और हमको डायरेक्शन मिलता है जीवन किस तरफ हमको आगे बढ़ाना है। हमको भी जीवन में जब भगवत गीता मिली और गीता से संबंधित ही गीता वृत्ति और गीता प्रवीण की उपाधियां मिली, तो हमारे पर एक दायित्व आया कि हम किस प्रकार से युवाओं को, युवाओं के साथ ही अन्य लोगों को भी जोड़ सकें। तो भगवत गीता के माध्यम से जीवन में हमको किस तरह से डायरेक्शन मिलता है, ये हमने सभी को बताने का प्रयास किया। हमारी तो इतनी मति नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से सभी को कुछ बतला पाए, लेकिन इस अल्प मति से भी जितना गुरुओं से सुनते हैं, जितना गुरुओं से कुछ विवेक प्राप्त होता है, उसी को सभी को बतलाने का प्रयास जीवन में किया जाता है। तो बाकी युवाओं के लिए भगवत गीता का क्या उपयोग है, कैसे उसको जीवन में लाके कैसे वो डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती होती है, उसको जलाने के लिए सारे साधन होने पर भी जलाने के बाद अगर उसकी दिशा पलट दी जाए वो तुरंत बुझ जाती है। आज के समय में हमारा जीवन उसी मोमबत्ती के समान है, यदि एक डायरेक्शन में चलते हैं तब तक तो वो जलता रहेगा, प्रकाशित होता रहेगा, हमको विजय प्राप्त होती रहेगी, लेकिन डायरेक्शन गलत होते ही वो जीवन बुझना आरंभ हो जाता है, हमारे जीवन में हमको असफलताएं मिलने लग जाती हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हमारे यूथ को डायरेक्शन मिलता है और हम सभी प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर वो डायरेक्शन जिस प्रकार से हमें अपने जीवन में मिल गया, उन सारे लोगों को वह डायरेक्शन प्राप्त हो सके और इस दिशा में सभी लोग आगे बढ़ सके।
0: यही हमें रूपल दीदी से आशा भी है, उम्मीद भी है, और जितने भी हमारे साथ इस समय सोशल मीडिया पर जुड़े हैं वो सभी आपको जय श्री कृष्णा भी बोल रहे हैं। जैसे हमारे साथ पूरन जी ठुसु लिख रहे हैं, रूपल दीदी जय श्री कृष्णा। और रूपल जी, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, जैसे हमारी गीता जी में लिखा है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, आपने अपने जीवन में इसको किस तरीके से मिला लिया है, किस तरीके से इसको अपना लिया है, ताकि इस समय जो हमारे सुनने वाले हैं, हर जन्म में हर व्यक्ति अपने परेशानियों से ग्रस्त, या तो अवसाद में है या जिम्मेदारियां है या कभी ये काम करना कभी वो काम करना है, तो किस तरीके से आप इन समस्याओं का समाधान इसके साथ जोड़े कि हम अपना कर्म करें और बाकी फल की चिंता हम प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। जी रूपल जी,
1: भगवत गीता पढ़ते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन भगवत गीता पूर्णतया जीवन में आ गई ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि हम जीवन भर भगवत गीता के सिद्धांतों को जीवन में लाने का प्रयास ही करते रहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो भगवत गीता किस प्रकार से हमको दिशा देती है और किस प्रकार से हम फल की चिंता ना करें और अपने जीवन को संभाल सके ऐसा कर पाते हैं। भगवत गीता जब से पढ़ना आरंभ किया, भगवत गीता के मंत्रों का प्रभाव भी ऐसा होता है कि अपने आप ही बुद्धि में वो प्रकाश आने लगता है। कोई भी सिचुएशन सामने आती है, अपने आप ही पता लग जाता है हमको कि इसका निर्णय क्या लेना सही होगा, किसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे और क्या हमारे लिए सही होगा। और हमारे इतने गुरु हमारे साथ भी रहते हैं, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो भगवत गीता जब पढ़ना आरंभ किया, धीरे धीरे अपने आप ही वो चीजें जीवन में आने लग गई। और जब हम बहुत आरंभ में, मैं 15-16 वर्ष की थी, तब जो हमारी गीता की अर्थ की कक्षाएं होती थी उसमें हमको कुछ टारगेट्स दिए जाते थे। प्रत्येक रविवार को हमारे आदरणीय आशु भैया, जो कि गीता परिवार के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उनके द्वारा एक बार हमको एक लक्ष्य दिया गया था। उदाहरण के तौर पर आपको बतलाती हूँ कैसे जीवन में गीता के सिद्धांत आते हैं। उन्होंने हमको लक्ष्य दिया सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इस एक श्लोक का, कि एक हफ्ते तक 7 दिनों का सभी को टारगेट लेना है कि आपको दुखी नहीं होना है। माँ डांटेगी, आपके साथ कुछ गलत होगा, कोई आपने गलती कर दी या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपको पसंद नहीं थी या नंबर कम आ गए, कैसी भी सिचुएशन आने पर आप दुखी नहीं हो सकते। अगर आप दुखी हो गए तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये 7 दिन आपको कैसे भी कंप्लीट करने हैं। और ये जब टारगेट मिला तब तक हमने विचार ही नहीं किया था कि जीवन में प्रसन्न रहना, आनंद में रहना भी इतना मुश्किल हो सकता है क्या। हम कभी विचार ही नहीं करते कि दिन भर में हम कितनी बार दुखी हो रहे थे, कितनी छोटी छोटी बात पे अपना मन खिन्न कर रहे थे। लेकिन जब वो टारगेट हमको मिला तब हमने उसको ऑब्जर्व करना आरंभ किया। और ऑब्जर्व करते करते वो दिन में 10 बार टारगेट ब्रेक करते थे, दिन में 10 बार दुखी हो जाते थे। डांट पड़ी तो दुखी तो होना ही है, मन तो दुखी हो ही गया, फिर कुछ गड़बड़ कर दी फिर मन दुखी हो गया, बाहर गए कोई टॉफी लेने गए थे वो टॉफी पर्टिकुलर नहीं मिली तो भी मन दुखी हो गया। इतनी छोटी छोटी बातों पे भी अपना मन दुखी करके बैठ जाते थे। तो ऐसी ऐसी जब सिचुएशंस होने लगी और टारगेट था 7 दिन पूरा करने का, तो जहां से गलती होती थी वहां से रिस्टार्ट कर देते थे। ऐसा करते करते कुछ लोगों को 2 हफ्ते लग गए, कुछ लोगों को 15 दिन लग गए, कुछ लोगों को 20 दिन लग गए, कुछ लोगों को 1-1, 2-2 महीने तक लग गए वो 7 दिन पूर्ण करने में। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो हमारी एक सामान्य अवस्था है प्रसन्न रहना, आनंद रहना, जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं, और वो प्रसन्न रहना ही इतना मुश्किल था कि हमको बार बार वो टारगेट रीस्टार्ट करना पड़ रहा था। तब जीवन में एक आनंद में रहने का स्वभाव लग गया कि कैसी भी परिस्थिति आए उसमें अपने को खिन्न नहीं होना है, कैसी भी परिस्थिति आए अपने मन को दुखी नहीं करना है। ये एक अभ्यास था 7 दिन का। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करते अपने मन को आनंद में रहने का स्वभाव बन जाता है, अपने मन को आदत लग जाती है कि अब हमको दुखी नहीं होना है। कैसी भी परिस्थिति आई, कभी नंबर वैसे कमाते नहीं थे हमारे, भगवान की कृपा ऐसी थी, लेकिन कभी नंबर कम आए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो बड़ा, पहले तो बहुत मुश्किल होती थी, अरे एक गलत करके आगे 2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन बातों से भी मोह छूट गया कि ठीक है 2 नंबर चले गए, अगली बार कवर कर लेंगे, अगली बार कुछ। अब मैं ये अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बतलाती हूँ, जो हमने गीता आरंभ करी थी पढ़नी, और अब तो जीवन में इतने सारे एडवर्स सिचुएशंस भी आते हैं, मास्टर्स करते करते, एग्जाम्स होते होते, और इतना सारा बड़ा लर्न गीता प्रोग्राम चल रहा है, तो कभी कोई कार्यकर्ता गड़बड़ हो जाती है, कभी कोई काम बिगड़ जाता है, कभी जो टारगेट लिया था वो पूरा नहीं होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी सामने आती है जिसमें मन बहुत दुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास मन का सफल नहीं हो पाता है क्योंकि हमको आनंद में रहने का स्वभाव लग गया। और ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक एक श्लोक कैसे जीवन को गढ़ता जाता है, ये हम सभी लोग जब गीता के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है।
0: सो ट्रू दीदी, और आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, जो मेरे मन में इस समय चल रहा था आपने उस सवाल का जवाब दिया। और मेरे मन में यह सवाल था कि जब हम किसी बात पर हमें कोई दोस्त हमारे ऑफिस में, हमें कोई बाहर चलते हुए कोई कुछ ऐसा कह देता है तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। और ये जो चिंता है, ये जो दुख है, कई बार आपके मन में 24 घंटे रहता है और आप रात को सो भी नहीं पाते हैं। पर आपने जो इसका उत्तर दिया उससे, जो आमतौर पर हम कहते हैं यार दुखी तो होंगे क्योंकि हम आखिर इंसान है, पर जब गीता जी के बारे में आपने बताया कि आपको ये कहा गया कि 7 दिन आप दुखी हो ही ना, और जब हम जीवन का एक दिन भी किसी भी बात पर दुखी ना होने से गुजारेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जिंदगी साफ सुथरी होगी, बिना किसी द्वेष के होगी, बिना किसी नाराजगी की होगी, और हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। आपकी वाणी को मैं थोड़ा सा आराम देना चाहूंगा और मैं भास्कर जी से पूछना चाहूंगा। भास्कर जी, आप जब गीता परिवार के साथ जुड़े, आपके लिए क्या लक्ष्य था? जब आप सेवा काल में थे, जब आप सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद आपने ये सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमारे जीवन के साथ, हमारे धर्म के साथ जुड़ा हो, और जब हम कश्मीर से जब आए तो यही एक रास्ता था जिस वजह से हमने सब कुछ छोड़ा, वो जगह भी छोड़ी जहां पर हमारा जन्म हुआ था, शायद हमारी जो मृत्यु है शायद वो आखिरी जगह भी हमें वहां नहीं मिलेगी, पर वो भी ना सोचते हुए हमने उसको छोड़ा। आपने learngita.com या लर्न गीता के साथ जब जुड़े, आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे जीवन में, जब आपको याद होगा, जब कोविड का समय था
0: जी,
2: उस समय तो सब रास्ते बंद हो चुके थे, बाहर सब आना जाना बंद हो चुका था, तो लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय में सेवा दे रहा था तो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, हमको जाना पड़ता था। लेकिन उसमें थोड़ा सा उस समय जब कोविड के कारण जब ऑनलाइन का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो उसमें भगवान ने, जैसे मेरी मन काफी समय से मंशा थी, ऐसा कुछ मन में था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी संस्कृत पढ़ सके या गीता के श्लोक पढ़ सके अच्छे से, जो सही उसका उच्चारण है। तो किसी तरीके से भगवान ने मेरे उसमें मोबाइल में एक लिंक भेज दिया जो गीता परिवार संबोधन था, तो मैं बिना सोचे उसको ज्वाइन कर लिया। जैसे दीदी ने बताया, हमारा चार होते हैं इसमें लेवल, L1, L2, L3, L4। L1 ज्वाइन करते करते मुझे इतना आनंद लगा क्योंकि गीता परिवार में जो सिखाने का जो व्यवस्था है, जो ट्रेनर्स इतने सक्षम है, इतने पेशेंट है, अगर को किसी को कुछ भी नहीं, जैसे आपको जानकारी है, हमारा तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू था, हमने तो हिंदी भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन ऐसे लोगों को भगवत गीता का उच्चारण सिखाना कितना कठिन है, तो ये गीता परिवार में ही संभव है। जो छोटी सी छोटी जो बात रहती है, किसी जो साधक होता है, अगर उसको कोई समस्या रहती है उच्चारण में, तो वो किसी को पीछे नहीं रहने देते। तो ये देखा तो मुझे मन में इतना अच्छा लगा, फिर मन करा कि क्यों ना हम सेवा दें। तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगा कि जो टैक्स सेवा में अच्छे से, जैसे तो मैं L2 में था, मतलब 2 अजाई जो हमने L1 में करके करा था, L2 में था, तो मैंने टैक्स सेवा के गीता परिवार अच्छे से ट्रेनिंग देता उस कार्य को करने के लिए। तो हमको जब उनको लगा कि मैं ये सेवा अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कम से कम 10-20 दिन का एक कोर्स टाइप रहता है, ऑनलाइन रहता है वो भी, तो उसमें उनको लगा कि भास्कर जी कर सकते हैं सेवा, तो उन्होंने मेरे को अप्रूव कर दिया। तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, तो मैंने L2 में जब था तो मैं टैक्स सेवा मैंने आरंभ की। करते करते आपको जानकारी है, ऑफिस में जब गीता का जो, जैसे दो बातें होते हैं, एक तो प्रचार होते जो कोई पैसा दे के आपको करने को करे, मैं आपको कहे कि भाई मैं आपको पैसे देता हूं, आप इस चीज का प्रचार करो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप खुद ही उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो आप स्वेच्छा से ऐसा आपके मन में विचार आ जाता है कि आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। तो मेरे को जितना भी समय फ्री मिलता था, या जब भी किसी से बात करने का अवसर मिलता ऑफिस में कार्य करने के दौरान, या ऑफिस के बाद के जो वर्क में अवसर होते थे, तो मैं एक ही बात करता था, गीता परिवार के बारे में बात करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गीता परिवार की गतिविधियां हमने देखी, तो ऐसा मन में जागा कि प्रचार तो एक ऐसी चीज है जो हमको हायर लेवल पे करना चाहिए। तो 2-3 साल तो ऐसे टैक्स सेवा में देता रहा, और मैं कम से कम अगर मैं सही वो 3-4 कक्षाएं तो मैं पर डे कर, मॉर्निंग के और शाम के, दिन में तो ऑफिस में रहते, मॉर्निंग शाम के मैं टैक्स सेवा देता रहा। लेकिन टैक्स सेवा देते रहते जो हम गीता परिवार से जो जुड़े उनकी जो गतिविधियां हैं उनसे इतने प्रभावित होके, फिर ऐसा मन हो गया कि नहीं, हमको गीता का प्रचार, हमको गीता की सेवा करनी है, सेवा कैसे प्रचार करके, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप चाहते हो कि वो दूसरे जन तक पहुंचे, तो ये हमारा मन में ऐसे विचार जा रहा, तो फिर प्रचार की तरफ हम जुड़ गए, तो गाड़ी चलती रही। और फिर हमारे गीता परिवार में अच्छे अच्छे कार्यक्रम रहते हैं। स्वामी जी का 75th बर्थडे था, तो गीता अमृत महोत्सव आनंदी में गया, तो उनमें पहली बार मैंने ऐसा ओकेजन ऐसा ये सेशन ज्वाइन किया था। तो वहां देखे तो अब मान लीजिए कि हम तो खो गए गीता परिवार में, कुछ नहीं रहा। फिर मन में ऐसे कि जो करना भी गीता परिवार के लिए करना है। और गीता परिवार एक ऐसी जो हमको लगता है एक ऐसी एनर्जी हमको देती है। पहले तो डर थे किसी धर्म के बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमारे जो शिक्षा मिलती है, जो विवेचन होते हैं उनकी, जो हम सुनते हैं शुभया से, रूपक दीदी से, या संजय बालपानी भैया, स्वामी जी से, तो हम सुनते रहते हैं जो डेली चलते हैं, तो इतनी एनर्जी मिलती है हम किसी से भी बात करने में हम जगते नहीं। तो उसमें क्या है कि प्रचार हम अच्छे से कर सकते हैं, हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा गतिविधि है जिसमें हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे जम्मू कश्मीर में जो खास, जैसे स्वामी जी बोलते हैं, आशु भाई बोलते हैं, जो हमारी मातृशक्ति है वो बहुत दमदार है, बहुत एनर्जी उनमें। तो ये मातृशक्ति हमारे जम्मू कश्मीर के विभाग को भी बहुत आगे ले जा रही है। और हम स्वामी जी के जैसे उनके वचन है उनके अनुसार प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बढ़ाने का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आता हूँ रूपल दीदी के पास। और जैसे भास्कर जी ने डॉक्टर आशु गोयल जी का नाम लिया, मैं व्यक्तिगत रूप से तो उनसे नहीं मिला हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे उनसे हुआ, उनके शब्दों से हुआ, उनके शब्द कोश से हुआ। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। और जब पहला शो हमने किया उसमें उन्होंने उस शो को सुशोभित किया। मतलब आप ये मान नहीं सकते हैं कि हम कितने खुशनसीब रहे। और मैं भी अब गीता परिवार का एक हिस्सा हूं। हम दोनों गीता परिवार के साथ जुड़ेंगे, हम क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूं तो मैं सुनना चाहूंगा वहां पे, मैं वहां से क्या सीख सकता हूं। रूपल दीदी, आपसे अगला प्रश्न मैं करूं, गीता परिवार के लिए समर्पित आप हैं, रूपल शुक्ल दीदी का क्या लक्ष्य है और किस तरीके से आप युवाओं को और युवतियों को प्रेरित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या संदेश होगा और किस तरीके से हम उनको उनके अंतर आत्मा तक पहुंचे ताकि वो किसी के कहने के बजाय खुद लर्न गीता, ज्वाइन गीता के साथ जुड़ जाए।
1: रूपल शुक्ला एक बहुत सामान्य घर की सामान्य लड़की थी। अगर वो गीता परिवार से नहीं जुड़ी होती तो आज के समय में यही देखते कि बीटेक करके बस इंजीनियर बन गए, और जो सभी के जीवन का आज का लक्ष्य बन गया है कि बड़े होना, पढ़ाई करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, अपना धन कमाना और अपना स्वार्थ लेकर के मर जाना, इस संसार से चले जाना। तो ये जो एक साइकिल सभी ने बना लिया, ये इतना स्वार्थपूर्ण दिखता है, सिर्फ अपने प्रसन्नता के लिए जीवन जियो। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो इसको चोरी कहा गया। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सा। कि जो हमको समाज प्रकृति से साधनों के द्वारा हमारा जो जीवन निर्माण होता है, जब हम समाज की सेवा के बिना यदि उसका केवल भोग करते रहते हैं तो हमें चोर कहा गया, तेन एव सा, हमको चोर कहा जाता है। और हम इसका कभी भी मन में भाव ही नहीं लाते कि हम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि बाल्यकाल से ही हमारा जीवन समाज की ऋण से बना होता है। तो जो समाज के ऋण से बना हुआ जीवन है, उस ऋण को तो चुकता कर सके, उसको तो चुका सके, तो समाज से इतना कुछ मिला, हम समाज को कुछ वापस दे सके। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि यह जीवन समाज की, मनुष्यों की सेवा के लिए है, और हम जितना दूसरों की सेवा इससे कर पाते हैं उतना ही हम इसका लाभ ले पाते हैं। तो ये जो शरीर है वो दूसरों की सेवा के लिए मिला है, खूब हम सेवा कर पाए। और आज मैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तो सिर्फ परिवार और अपने लिए ना जीकर अपने समाज के लिए कुछ कर पाती हूँ, इसका मन में बड़ा भारी संतोष होता है। क्योंकि जितना हमको समाज से मिल रहा है कुछ तो हम दे पाए, और देने की भावना से ना दे वरना मन में अहंकार भी आ सकता है। हम जब गीता परिवार में सारी सेवा का कार्य करते हैं, भास्कर भैया ने भी कहा कि हम निष्काम सेवा करते हैं, हम दूसरों के लिए जब मैं करने लगा तो मुझे बहुत संतोष हुआ। तो हमारे सारे जितने 15,000-16,000 कार्यकर्ता सेवा देते हैं, उन एक एक कार्यकर्ता का यही भावना है, कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, वो हम अपने ऋण को चुका पा रहे हैं। अब जो हम ऋण को चुका रहे हैं तो इसमें कोई अहंकार की भावना तो हो ही नहीं सकती, इसमें उदार अपने मन का भाव हो सकता है। तो इसलिए हमको जितना भगवान ने जितने टैलेंट्स दिए हैं, जितने भगवान ने सुविधाएं दी हैं, जितने साधन दिए हैं, इसका उपयोग हम दूसरों के लिए कर सके। भगवद गीता में एक श्लोक आता है जो अभी चोरी की बात हुई उसी के अपोजिट एक श्लोक कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यंते सर्व के विषय ही भूंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। कि जो केवल अपने लिए जीवन नहीं जीता, जो दूसरों के इसके विपरीत जाकर दूसरों के लिए समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई पाप नहीं मिलते। तो इसलिए हम अपना जीवन केवल अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए करें। 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो भगवान वहां सर्वभूत हिते रताः की बात करते हैं, वो लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए जीवन जीना आरंभ करते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं, तो मुझे बहुत भारी संतोष है इस बात का कि मैं आज एक सामान्य इंजीनियर ना होकर के समाज के लिए कुछ कर पाती हूँ, अपना समय कुछ दूसरों के लिए लगा पाती हूँ। और इस सेवा में भगवान ने मुझे लगाया, इसके लिए उनकी भी बहुत मैं कृतार्थ होती हूँ। इस बात को सोचकर उनकी कृपा का साक्षात अनुभव कर पाती हूँ, मेरे गुरुजनों से जो मुझे प्राप्त हुआ, जो उनसे मैं कुछ सीख पाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मार्ग पर लगाया। मैं केवल एक सामान्य बालिका ना होकर के 16,000 लोगों के और 16,00,000 लोगों के परिवार का एक भाग बनी हूँ और दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास कर पा रही हूँ।
0: आप हमारे पूरे भारतवर्ष के हर परिवार की एक स्रोत ऐसी हैं जो हमें सच्चे मार्ग पर लेके जाने के लिए मैं कहूँ कि जो कॉन्फिडेंट है हम सबको एक सही रास्ता दिखाने के लिए। मैंने आपसे साथ में ये पूछा था कि युवा और युवतियों, जो कहा जाता है कि देश जो है वो युवाओं से बनता है, अगर युवाओं की सोच सकारात्मक हो, अगर युवाओं की सोच धार्मिक हो, अगर युवाओं की सोच दूसरे की मदद करने वाली हो, तो हम उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ें? रूपल दीदी उनको अपने साथ कैसे जोड़ती हैं? क्या वो संदेश उनको देती है? मैं चाहता हूं कि आप हमारे सोशल मीडिया पर जो इस समय परिवार जुड़े हैं, जो हमारे रेडियो वितस्ता की श्रोता इस समय सुन रहे हैं आपको लाइव, मैं सुनना चाहूंगा कि रूपल दीदी युवाओं और युवतियों को कैसे जोड़ती है।
1: आज की युवा की तो वो हालत है, भगवद गीता में बड़ा सुंदर श्लोक उसके लिए आता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा हनंताश बुद्धयो व्यवसाय नाम। बहुशाखा, ये जो इतने सारे विकल्प हमको मिल गए, इतनी सारी शाखाएं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए, इसलिए युवा आज का फोकस कर ही नहीं पा रहा है। ये जो डायरेक्शन है, ये जो फोकस है, ये हमको भगवद गीता से मिलता है। और हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो, हम किसी भी सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो, हम किसी भी फील्ड में जाना चाहें, यदि भगवद गीता हमारे साथ में है तो हमको विजयी ही बनाती है। और 100 लोगों के बीच में हम खड़े होते हैं तो हमारा एक अलग व्यक्तित्व होता है। भगवद गीता का अंतिम श्लोक अगर हम देख लें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शेर विजयो भूते ध्रुवा नेतिर्मतिर मम। जहां पे भगवान योगेश्वर कृष्ण है और साक्षात अर्जुन है, वहां पर ही विजय है। तो जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है, यदि भगवद गीता हमारे जीवन में है, भगवान योगेश्वर की भक्ति हमारे जीवन में है और अर्जुन की मनस्थिति, तो साक्षात हम इस कुरुक्षेत्र रूपी संसार में लेकर के घूम रहे हैं, तो वहां पर हमको विजय प्राप्त होनी ही होनी है। वो मंत्रों का प्रभाव भी होता है, वो भगवद गीता के सिद्धांत भी होते हैं जो हमको आगे से आगे पुश करते रहते हैं। तो इसलिए भगवद गीता पढ़ना आरंभ करें, अपने जीवन को एक दिशा दें, अपना समय केवल और केवल अपने लिए ना लगाकर दूसरों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं विचार मन में रखें, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं उसका रिटर्न तो अपने को मिलता ही मिलता है, हम ना चाहे तो भी हमको मिलता है। तो जब दूसरों के लिए करेंगे उसका पुण्य फल हमको प्राप्त होगा और उस पुण्य फल के प्रभाव से जीवन में हम किस गति से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे इसका हम विचार भी नहीं कर सकते। भगवद गीता विजय का शास्त्र है, हमको हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। तो इसलिए युवाओं को मेरा संदेश यही रहेगा कि आप भगवद गीता खूब पढ़ें, अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को लाने का प्रयास करें। और भगवत गीता जो हमें संदेश देती है शरणागति का, कि हम सभी लोग जो भी कार्य करें भगवान को अपने मन में रखें और प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करते रहें, तो हमको अपने कर्मों का पाप पुण्य नहीं मिलता है। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें और खूब गीता पढ़ें, क्योंकि गीता हमको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगी। हम ये नहीं कह सकते हम डॉक्टर है हम क्या भगवत गीता का करेंगे, हम इंजीनियर है हम क्या करेंगे। नहीं, हमारे साथ इतने डॉक्टर्स जुड़े हैं, इतने इंजीनियर्स जुड़े हैं, इवन हमारी क्लासेस जेल में भी चलती हैं, स्कूल्स में भी चलती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के लिए भी चलती हैं। तो सभी लोगों के लिए गीता उतनी ही उपकारी है, उतनी ही कल्याणकारी है।
0: दीदी एक कॉल आ रहा है, देखते हैं कॉल किसका है, कॉल सुनते हैं। जी नमस्कार, स्वागत, जय श्री कृष्णा, कौन बोल रहे हैं?
3: जय श्री कृष्ण, मैं सुषमा बोल रही हूँ, एक साधक ही है मैं तो, मतलब मुझे ना एक प्रश्न पूछना था रूपल दीदी।
0: जी पूछे, वो आपको सुन रही है, पूछे।
3: अच्छा ठीक है, मतलब इस टाइम पूछूं?
0: जी जी पूछिए पूछिए, आप लाइव हैं।
3: जय श्री कृष्ण दीदी, क्योंकि मैं भी कश्मीर से ही हूँ सुषमा बस, और मतलब जैसे रूपल दीदी बोल रही है ना कि इनका वृत्ति हो गया, तो हम भी इतने एनकरेज हो गए, तो हमने भी किया, मैंने भी वृत्ति किया हुआ है, लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है? सुख एक चीज होता है, आनंद चीज है, वो पूछना था मुझे।
0: जी जी आपका आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए, और आप सुनिए आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: ओके ओके, रिपीट कर देंगे क्या? थोड़ी सी धीमी आवाज थी तो मैं शायद
0: उन्होंने कहा कि
2: उनका प्रश्न।
0: जी जी जी भास्कर जी बताइए प्रश्न क्या था।
2: पूछना चाहती थी कि सुख और दुख में अंतर क्या है।
1: अच्छा, सुख हमको बाहरी साधनों से मिलता है, सुख क्षणिक होता है, लेकिन आनंद शाश्वत होता है। आनंद कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसका कोई विपरीत हो सके, लेकिन सुख का दुख विपरीत हम कह सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊं, तो ये मेरा सुख था, और मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं हो सकता। हम अपने स्वरूप की बात करते हैं, अपने शास्त्र में देखते हैं तो सच्चिदानंद रूप, वो हमारे उस परमात्मा को, हमारे जीवात्मा को भी आनंद स्वरूप कहा गया है। तो आनंद शाश्वत स्टेट होती है, वो हमारा स्वरूप होता है, उसका विपरीत होता नहीं। और आनंद डिपेंडेंट नहीं होता है बाहरी साधनों पर। हमारा बाहरी साधनों से जो प्राप्त होता है वो सुख तो हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता। और सुख पाने में है, हमको कुछ मिल गया, हमारी कोई डिजायर थी कंप्लीट हो गई, हमको सुख मिल गया, लेकिन आनंद हमको देने खोने इन सब में नहीं होता। आनंद आंतरिक होता है, आप बिना किसी कारण के भी आनंद में रह सकते हैं, लेकिन सुख के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। तो ये अंतर होता है हमारे सुख और आनंद में। आनंद एक स्टेट है, लेकिन सुख क्षणिक होता है, किसी चीज से प्राप्त होता है, किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है। आनंद डिपेंडेंट नहीं होता, वो एक हमारी स्थिति होती है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कॉल हमारे पास कश्मीर से आया था, और मुझे उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष से भी हमारे पास कॉल्स आ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की पहुंच तो पूरे विश्व तक है। जहां पर हम गीता की बात करते हैं, गीता परिवार की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम जहां भी बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा लोग जुड़ते हैं, और सकारात्मक सोच के साथ जो लोग होते हैं वो जुड़ते हैं। हमारे साथ प्यारे लाल सप्रू जी जुड़े हैं, वो नमस्कार मारा सारनी सभी को नमस्कार कह रहे हैं, और ये हमारे ऐसे श्रोता हैं सोशल मीडिया के और रेडियो वितस्ता के, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ रूपल जी आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ भास्कर जी से कि जब जम्मू कश्मीर दो भागों में बंटा हुआ है, जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन, और लद्दाख रीजन तो अब यूटी बन गया है, दोनों रीजन में काम करने के लिए क्या गीता परिवार का जो पहुंच है गीता परिवार की वो कितनी है दोनों रीजन्स में, और कितना आसान और कितना मुश्किल हो जाता है?
2: भाई जी आपको तो स्टेट के बारे में क्या स्थिति है सबको अच्छे से जानते हैं, तो श्रीनगर में आपको स्थिति क्या है सबको पता है हमारे पूरे देश में। तो हम यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट था वो जम्मू था, जम्मू में हमने जितना संभव था वो कर लिया। अभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो गीता परिवार से जुड़े हैं वो श्रीनगर में हैं, जगह जगह पे हैं, तो सब लोग अपने लेवल पे अपना प्रचार का जो कार्य है वो सब कर रहे हैं। और अभी जम्मू डिवीजन में भी हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजौरी है, पुंछ है, उधमपुर है और डोडा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां तक हम अभी प्रयास कर रहे हैं वहां तक हम पहुंचने का। वहां से भी हमें गीता परिवार में जो साधक हैं वो जुड़े हैं और उनको हम प्रचार से जुड़े हुए। हमारा एक गीता परिवार में जीपी टीम 11 का एक कंसेप्ट है जिसमें हम एक टीम बना लेते हैं जो अलग अलग प्रचार करने अलग अलग कार्य करने के लिए विचार कर लेती है और कैसे उसको करना है, तो फिर हम निर्णय लेके अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। वैसा भी हमारा कार्यक्रम है इस वर्ष हमने सोचा है कि श्रीनगर में हम एक अच्छा सा गीता परिवार की ओर से कार्यक्रम करेंगे जिसमें अच्छे नंबर में हमारे धर्म के लोग रहते हैं आते हैं, तो उस दिन हम ऐसा प्रचार हमारा विचार है कि वहां पे भी हम इसका प्रचार अच्छे से करें और आशा है कि इसका प्रचार अच्छे से होगा। और हमारे जो गीता परिवार की जो एक्टिविटी है गीता पढ़ाने के अतिरिक्त हम जैसे स्वामी जी का आदेश है उनका जो सोच है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचने का है, तो उन तक पहुंचने के लिए जीपीटी मलेवन का जो मैंने भी बताया हम अलग अलग जो विशेष स्कूल है स्कूल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलते हैं, उनसे आग्रह कर लेते हैं कि हम जो गीता परिवार ने जो एक कंसेप्ट बनाया है इसका बाल संस्कार देने का, तो उसके अंतर्गत उनसे मिल लेते हैं, उनसे आज्ञा ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, तो हम बच्चों के बीच में जाके अपना जो एक्टिविटीज है गीता परिवार की जो अप्रूव है उनको बोल के हम बच्चों में संस्कार क्रिएट करने का एक अभी कंसेप्ट चल रहा है, तो उसके आगे उसकी दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं और इस बार तो अच्छा प्रदर्शन हमको जुम्मन में करने को अवसर मिला।
0: चलिए कोशिश हम करेंगे और कोशिशों से कभी हम हारते नहीं है, अगर हम कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती है पर हमें अनुभव प्राप्त होता है। रूपल दीदी आपसे डॉक्टर आशु गोयल जी के बारे में तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन उनका आशीर्वाद कैसा है और किस तरीके से है, बट उससे पहले मैं एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सभी हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। आज के दौर में जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में या तो हम बात नहीं करते या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम मानते हैं कि ये शायद हमें सबको बताना नहीं चाहिए। मैं एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव के बीच भगवद गीता एक आम इंसान के मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ और आंतरिक शांति में क्या बदलाव ला सकता है।
1: भगवद गीता हमको बतलाती है हम केवल शरीर मात्र नहीं है, हमारा जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, हम शाश्वत परमात्मा का अंश है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस श्लोक से हमको पता लगता है कि हम भगवान का ही अंश हैं और सीधा सीधा भगवान जब ये बात कहते हैं तो मन में यह विश्वास आता है कि ये जो बाहरी इच्छाओं पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, बाहरी इच्छाओं से हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये हमारा गुण नहीं है, ये हमारा लक्षण नहीं है, हमको इसमें नहीं जाना चाहिए, ओवर थिंकिंग का परिणाम है। भगवद गीता तो स्टार्ट भी इसी से हुई कि अर्जुन ने जब देखा सामने द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह को तो उन्होंने तो सीधा का सीधा कह दिया कि सीदंत मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात्त्वचयो परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन आपको बतला देती हूँ यह बात किस लिए महत्वपूर्ण है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा गांडीव धनुष जिसने भी गांडीव धनुष का अपमान किया उसका मैं वध कर दूंगा, और अर्जुन स्वयं अर्जुन उस अपने गांडीव धनुष के लिए जो उनको इतना प्रिय है कहते हैं सीधन वो गांडीवम संसते हस्तात कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। अब सोचिए अर्जुन की मनस्थिति क्या रही होगी, वो किस परिस्थिति में होंगे, सामने देख करके उन्होंने तो कह दिया मैं भिक्षा मांग के अन्न खा लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन की स्टेट हो गई। लेकिन अर्जुन कोई हमारे जैसे नहीं है, 84 वर्ष के थे अर्जुन जब वो महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे थे और जीवन में किसी भी युद्ध में परास्त हुए नहीं थे, भगवान शिव से भी मल्ल युद्ध में उन्होंने भगवान शिव को सेटिस्फाई किया, उनको संतुष्ट किया, तो आप सोचिए उनका पराक्रम किस स्तर का है। और उसके बाद जब अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, इतना बड़ा योद्धा ये बात कहता है तो उसके बहुत मायने होते हैं, तो इसका मतलब उस समय वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इतने इस स्थिति में होने पर भी उन्होंने सारे आर्गुमेंट्स दे दिए भगवान कृष्ण को, और फिर भगवान कृष्ण से उन्होंने अंत में कहा जो हमारे सब हम सभी के लिए सीखने की बात है, सारे आर्गुमेंट्स देने के बाद ये नहीं मैं जा रहा हूं मैं नहीं लड़ूंगा, उन्होंने भगवान से कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मुझे श्लोक गाना बहुत पसंद है इसलिए मैं गा के ही कहती हूँ, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म स

0: इतना सब होने पर भी अर्जुन यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि अब मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपका शिष्यत्व भाव स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लेकर जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी है वो मुझे बतलाएं, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो ये जब शिष्य भाव उन्होंने भगवान के समक्ष रख दिया, तब भगवान ने उनको उत्तर देना दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ किया है। तो कई आचार्य तो भगवद गीता का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको कोई सिंपथी दे के, अरे अरे तुम तो बड़े दुखी हो, मुझे तो तुमको सिंपथी देनी चाहिए, तुम तो ऐसा क्यों सोचते हो, तुम तो बड़े उदार, ये सब नहीं था। भगवान ने उनको फटकार लगाई, भगवान ने उनको जोर से डांटा, ये कैसी कायरता की बातें करते हो, उनको कितने सारे भगवान ने गलत शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए, भगवान ने कहा कि ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, और उनको बहुत डांट लगाई। और उसके बाद में कहा नहीं तुमको तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम दूसरी परिस्थिति में कह रहे हो तो बात अलग थी, लेकिन जीवन में आप कर्तव्य कर्म से भाग नहीं सकते। वहां पे भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन अर्जुन का कर्तव्य कर्म था, वो क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ना, तो युद्ध के मैदान में आकर वो वहां से भाग नहीं सकते, ये कायरता होगी। तो भगवान हमको संदेश देते हैं जीवन में कर्तव्य कर्म करने का, और इस तरह से जो हमारा भी मानसिक तनाव आता है, जो हम भी स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो भगवद गीता का एक श्लोक हमको हमेशा, हमने बहुत बार सुना भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूते संगोस्तु कर्मणि, कि कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार ही नहीं है, तो फल की चिंता करके और इन सब बातों में क्यों फंस रहे हो, क्यों अपने मन को दुखी करते हो, फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बियॉन्ड कंट्रोल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। जो चीज हमारे कंट्रोल में है हमारा पुरुषार्थ, वो हम कर सकते हैं, हमारी चेष्टा, हमारी इच्छा, हमारे टारगेट सेटिंग, ये सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है वो सब कुछ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसका, उसमें आपका अधिकार ही नहीं है, तो उसकी चिंता करके व्यर्थ स्ट्रेस में मत जाओ, तनाव मत लो, उसको छोड़ दो, अपना कर्तव्य करते रहो। कर्तव्य में परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए, चेष्टा है हमारी, जो पुरुषार्थ करना है उसमें आपने 50% किया, फिर आप दुखी होते बैठते हो कि अरे रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना 100% देना है, भरत भैया को अपना 100% देना है, शो सफल होगा कि नहीं होगा उसकी चिंता भरत भैया नहीं कर सकते, क्योंकि वो भरत भैया के कंट्रोल में नहीं है। तो ये जब हम अपनाते हैं, ये मन में लाते हैं, तब जाके हमारा मानसिक तनाव बैलेंस में ला पाते हैं। और भगवद गीता हमको संतुलन सिखाती है सभी क्षेत्रों में। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्य भारत। भगवान अर्जुन को कहते हैं अरे ये तो आने जाने वाला ही, ये परिस्थितियां आने जाने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तान तितिक्षस्व, उन सभी को सहन करना, उसमें अपने को संतुलित रखना, नंबर आने पर बहुत उछलना भी नहीं, फेल हो जाने पर सीधा जाके छलांग भी नहीं लगा देना, अपना बैलेंस बना के रखना, क्योंकि किसी भी क्लास में कोई भी स्टैंडर्ड जाके कोई भी जीवन में पढ़ाओ वो पूरा जीवन नहीं होता है, वो जीवन का एक भाग होता है, उसको उसी भाग की तरह ट्रीट करना कि इसमें कुछ भी गलत हो भी गया, मेरी डिजायर रिजल्ट नहीं भी आए तो भी मैं इसको आगे जीवन में कवर कर सकता हूँ, ये मेरा पूरा जीवन नहीं था। इतने बड़े जीवन में हम उसको अपना जीवन बना करके जाके छलांग लगा देते हैं, ये तो सही तरीका नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ गलत घटे उसको बिल्कुल बहुत छोटा करके हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप उल्टा कर देते हैं। जब हमारी परेशानी देखनी होती है तो माइक्रोस्कोप लगा करके एकदम बड़ा देखा, लेकिन हमको करना उसको उल्टा है, उल्टा करके उसको बहुत छोटा देखना है, कि अरे ये इतनी छोटी बात है, इतनी छोटी है और इतनी छोटी देखनी है इसको सोल्यूशन हमको, क्योंकि सारी चीजें जो हमारे आसपास घट रही है और वो हमसे बड़ी तो नहीं हो सकती, तो उसका सोल्यूशन भी हम ही कर सकते हैं। और जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए अपने गुरुओं का सहयोग लेना, अपने गुरुओं से डिस्कस करना, अपने कॉन्फिडेंशियल लोग जो है उनसे डिस्कस करना, और बाकी जो बातें आपको नहीं सूट करती या फिर आपको तनाव देती है उनको छोड़ देना, लेकिन जीवन में संतुलन बना के रखना। जब संतुलन बना के रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, हम अशांत रहेंगे तो हमको सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मन की अशांति हटानी है, और शांति ये सोच के हटानी है कि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अपना 100% अपने पुरुषार्थ में देता रहा हूं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, उसे मेरा कंट्रोल नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को, चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा पूरा जीवन नहीं है, वो जीवन का कोई एक पड़ाव है, और वो पड़ाव इट विल पास अवे, एक सूत्र मन में हमेशा रखना, इट विल पास अवे, लेट इट गो, तो जस्ट गो विद द फ्लो, बाकी सारी बातें आप छोड़ दीजिए, जो कुछ भी अच्छा है या बुरा है वो जाने ही वाला है, जब जाने ही वाला है तो उसमें फंस करके अपना जीवन क्यों समाप्त करना, अपना इतना समय क्यों नष्ट करना, क्योंकि जितना समय हम उस तनाव में उतने समय प्रसन्न तो नहीं है, और जीवन में हमको प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करने हैं, तो अपना उतना समय नष्ट किए बिना अपने विवेक से खूब आनंद में रहना और अपने को संतुलन में बनाए रखना।
1: रूपल दीदी, पहले तो मैं आपको नमन करता हूं। दूसरा, आप ने अभी कहा था कि हम जिंदगी में जब

0: वाकई ये हमारे जीवन का आधार है जिसमें हम अच्छे जो इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपने जो मेरे सवाल का जवाब दिया उसमें अगला सवाल जो था, अगला प्रश्न था, उसका भी आपने उत्तर दिया, जो हमारी गीता जी का पहला श्लोक है। ये मेरा प्रश्न था और इस कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर आशु गोयल जी, हमने कोशिश करी थी आज उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, पर वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। वो हमारे हर शुक्रवार के कार्यक्रम में जरूर जुड़ेंगे, जब उनके पास समय होगा वो हमारे पास जुड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक कोई ऐसी बात जो डॉक्टर आशु गोयल जी की आपको और हम सबको अच्छी लगती हो, उनके उपदेश में, उनके शब्दकोश में।
1: उनकी जो गीता के लिए निष्ठा है वो अद्वितीय है, ऐसी निष्ठा हमने देखी नहीं। मैं आपको बतलाती हूँ, मैं 10 वर्ष की थी जब मैं गीता परिवार से जुड़ी, बहुत छोटी बालिका। वो सिर्फ ये सुन करके गीता परिवार के बाल संस्कार केंद्र पे, गीता परिवार की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उसमें एक साप्ताहिक बाल संस्कार केंद्र भी होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, सीखते हैं और वहां पे कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो सिखाते हैं। हम केंद्र पर जाना आरंभ किए, वहां पे हमारी नेहा दीदी होती थी, हमारे आदरणीय आशु भैया वो हमको सिखाते थे। तो वहां पे मैं तो सिर्फ ये सुन के गई थी, एक 10 साल के बच्चों को सोचिए किस चीज का ही आकर्षण हो सकता है, वो है खेल का। तो हमको खेल खेलना पसंद था और बताया गया गीता परिवार के केंद्रों पर ऐसे खेल खिलाए जाते हैं जो आपको कहीं दूसरी जगह मिलेंगे ही नहीं। अब ये बात सुनी तो मन में ऐसा उत्साह आया कि बस गीता परिवार के केंद्र पे जाना है और वहां पे बढ़िया बढ़िया खेल खेलने, क्योंकि वहां पे एक साथ बच्चे भी बहुत होते हैं। हमारे कॉलोनीज में आजकल कहां इतने बच्चे मिलते एक साथ, 50 बच्चे, 100 बच्चे। सिर्फ इतनी बात सुनकर मैं उस केंद्र पे जाने लग गई। उस समय मेरी एक फ्रेंड थी मेरे 7th क्लास में, उसका नाम था प्रज्ञा। तो मुझे तो कई बार मन में यही भावना आती है कि भगवान ने मेरी प्रज्ञा को जागृत कर दिया और उस प्रज्ञा को मेरी प्रज्ञा के रूप में मेरे सामने भेज दिया। उसने मुझे गीता परिवार से जोड़ा, उसने मुझे बात बतलाई, मैं केंद्र पर जाना आरंभ किया। मुझे इतना मजा आया वो खेल खेलने में, खेल खेलने का इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो ध्यान करना, ये कहानी सुनना और ये बहुत सारी बातें भी अच्छी अच्छी सिखाई जाती थी, उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होने पर भी वहां जाकर खेल खेले और वो सारी बातें सहज रूप से सुनते ही थे। और जब आप रोज रोज वो बातें सुनते हैं और आपको एज अ लेक्चर नहीं बतलाई जाती है, वो हम उन कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं घटते हुए, वो आदतें कुछ हम मंथन कर रहे हैं उन बातों पर, और छोटे बच्चों को जब सिखाई जाती है उसका मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कच्चे घड़े को आप जिस शेप में लाना चाहेंगे, जैसे जैसे हाथ घुमाएंगे उसी शेप में ढल जाएगा। हम केंद्र पर जाने लगे, आदरणीय आशु भैया वहां पे हमको ये सारी बातें सिखलाते थे, और उसमें हर सेशन में वीकली 2 आवर्स का होता था संडे को, और हर सेशन में जो गीता के लिए वो बोलते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गीता हम देखते थे येलो कलर की पुस्तक घर में मंदिर में रखी हुई है, इससे ज्यादा उसकी कोई पहचान नहीं थी। टीवी में देखते थे कि जाकर के अदालत में वहां पे हाथ रखा, गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं। अब इससे ज्यादा गीता की कोई पहचान ही हमें नहीं पता थी, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। घर में थोड़ा धार्मिक वातावरण होने पर भी गीता पढ़ना और पढ़ाना इतना स्वाभाविक नहीं होता था। जब वहां गए, आदरणीय आशु भैया कहते थे गीता विजय का शास्त्र है, गीता विजय दिलाती है। ये दो लाइनें ऐसे दिमाग में बैठ गई थी कि उन्होंने जब कहा गीता कंठस्थ करना आरंभ करिए, जब अपने जीवन में कोई ऐसी बात होती है जिसके लिए हम इतने निष्ठ हो, हमारी इतनी दृढ़ मति उस बात के लिए हो, अपने आप ही सामने वाले को कहते समय वो बातें ट्रांसफर होती हैं। और जब वो हमको गीता के लिए इतने कन्विक्शन के साथ कहते थे तो हमारे मन में हमको पता भी नहीं लगा वो कब धीरे धीरे बातें ट्रांसमिट हो गई और हमारे मन में आया हम भी गीता कंठस्थ करना आरंभ करें। और गीता कंठस्थ करनी आरंभ करी, लगभग 1 वर्ष में पूरे 700 श्लोक याद करने के बाद। वो सिर्फ इसलिए याद किए थे कि आशु भैया ने कहा उनको सुनाना है कि उनके केंद्र पे कोई एक रूपल नाम की बच्ची है जिसको गीता याद हो गई है, उनको मेरा नाम पता लग जाएगा। ये एक मन में भावना थी और इस भावना के साथ कोई बालक कितना बड़ा पराक्रम कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो बालकों में होती है। गीता कंठस्थ करी, आदरणीय आशु भैया को सुनाया, उनको इतना आनंद हुआ और उनकी जो ये निष्ठा थी यही हम लोगों को मिलती गई। तो इसलिए वो बाल संस्कार केंद्र जो हमारे चलते हैं, बालक उस पे जो जाते हैं वो सीखते हैं, वो अलग ही प्रकार का होता है। और इस तरह से वहां पे सीखा, गीता कंठस्थ कर ली, धीरे धीरे संस्कृत में रुचि आने लगी, और कैसे 12th के बाद मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, मार्गदर्शन लिया, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े व्यक्तित्व तो सहज रूप से उपलब्ध है, हमको उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन हमारे लिए कोई भगवान ने मुझे प्रेरणा ऐसी करी होगी कि ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं मुझे, मैं उनके पास जाऊं उनसे पूछूं ये गीता के लिए उनकी निष्ठा। और मैं उनके पास जाकर जब मैंने पूछा कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए, मैं बीएससी करूं या बीटेक करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मैंने उनके सामने दो

0: ऑप्शन रखे थे और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। उसके बाद उन्होंने उन दो ऑप्शन को तो एंटरटेन किया ही नहीं, उन्होंने सीधा कहा अरे हमको डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत हो गए हमारे समाज में, हमको डॉक्टर्स इंजीनियर्स और नहीं चाहिए। उनकी मैं आलोचना नहीं करती हूँ डॉक्टर्स इंजीनियर्स की, उनकी भी आवश्यकता है ही, लेकिन शायद हमारा जीवन उस उद्देश्य के लिए बना नहीं था। तो आदरणीय आशुभा ने कहा ये सब छोड़ो तुम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते। अब मैं आपको बताऊं 11th क्लास में ऑप्शन में संस्कृत और कंप्यूटर था, मैंने संस्कृत छोड़कर कंप्यूटर लिया था। मुझे इतना अब ऐसा मन में था संस्कृत के लिए, संस्कृत बोरिंग होती है, नंबर तो आएंगे नहीं, बोर्ड होता था, कैसे संस्कृत ले ले नंबर ही चले जाएंगे। आदरणीय आशुभा ने कहा संस्कृत लो, तब मुझे वो सारी बातें याद आ गई। मैंने सोचा मैं कैसी संस्कृत पढ़ सकती हूँ, हम तीन फ्रेंड्स एक साथ थे। तो जब हमने पूछा तो आदरणीय आशुभा ने कहा नहीं, आजकल संस्कृत में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो कि जिनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है या फिर कोई नंबर अच्छे लाना चाहता है तो वो चला जाता है, बाकी वो लोग संस्कृत में क्रीम स्टूडेंट्स नहीं जाते। तुम लोग साइंस स्ट्रीम से पढ़े हो तो बुद्धि थोड़ी विकसित है, तुम लोग संस्कृत पढ़ो। अब हमारी श्रद्धा उनके ऊपर ऐसी थी कि हमने कहा ठीक है आप आशीर्वाद देते हैं तो हम पढ़ लेंगे, आपका साथ रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे जीवन में। उन्होंने कहा और हमने एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन यहाँ लिया था सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, लेकिन भाग्य का कहीं भाग्य में कहीं और ही जाना लिखा था। तो उसी समय परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के पास एक चिन्मय मिशन का कोर्स स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड मास्टर्स अद्वैत वेदांत में। उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी को कहा अपने कुछ शिष्य भेजिए, और परम पूज्य स्वामी जी ने आदरणीय आशुभा को कहा कुछ अपने पास ऐसे बालक है क्या। आदरणीय आशुभा ने कहा तीन बच्चियां हमारी हैं जिन्होंने गीता कंठस्थ कर ली है, उनको भेजें क्या। अब ये भाग्य, ये मैं कभी कभी अपनी स्टोरी सोचती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक मूवी की स्टोरी की तरह लगती है कि ये सब वास्तव में मेरे जीवन में घट रहा था क्या, कि मैं 10 वर्ष की गीता परिवार से जुड़ी, फिर कैसे संस्कृत में रुचि आई, गीता कंठस्थ करी, फिर संस्कृत पढ़ने के लिए भी चली गई। केरल जाकर 5 वर्ष हमने अध्ययन किया, उसमें प्रस्थान त्रयी, सारे उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, अद्वैत सिद्धि, लघु चंद्रिका, ये सब एडवांस लेवल के ग्रंथ है अद्वैत के। ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करके 5 वर्ष के बाद हम वापस आए और गीता परिवार के कार्य के लिए हमको जो बेस मिला है गीता परिवार से जुड़ने के कारण, और आदरणीय आशुभा से अगर हम नहीं जुड़े होते तो मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कहती हूँ कि शायद हम गीता परिवार में इतना आगे नहीं आ पाते, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूअस जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो मोटिवेशन देने वाला नहीं होता, तो आपका उत्साह धीरे धीरे डाउन हो जाता है और फिर आप उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। आज भी हमारे लर्न गीता में आदरणीय आशुभा कार्यकर्ताओं की रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं, उनके एनपीएस सेशंस लेते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं कि ये कार्य ही हमारे लिए सब कुछ है, तब हम उस जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाया, आज भी हमको रेगुलर उनसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है, उनको उनके जीवन को देखकर मिलता है कि किस प्रकार से धन के पीछे नहीं भागना, अर्थारोहण दे दो राम उनका एक सूत्र है। तो अर्थ का आरोहण जरूर, अर्थ जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये वो हमको सिखाते हैं। अपना भी बिजनेस शट डाउन करके उन्होंने अपना पूरा समय गीता परिवार के लिए दे दिया। ये हमारे लिए एक आदर्श बात है और इसको देखकर हम सीखते हैं कि सिर्फ अपना जीवन नहीं होता, समाज के लिए कुछ करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये एक सबसे अच्छी बात है जो उनके बारे में लगती है, उनकी जो गीता के लिए निष्ठा है और उस निष्ठा से उन्होंने कैसे हजारों कार्यकर्ताओं से अपने को जोड़कर रखा, सारे कार्यकर्ताओं के मन में जो उत्साह बना रहता है, हमारे मन में जो उत्साह बना रहता है, ये केवल उनके कारण है। तो उनके हम ऋणी भी हैं, उन्होंने हमें परम पूज्य स्वामी जी से भी जोड़ा, हमको गीता परिवार में भी इतना आगे लेकर आए और जीवन इस सेवा में लग गया, ये केवल उनके कारण है। तो मैं उनके लिए ऋणी हूँ, उनकी मैं क्या ही, वो मेरे पास शब्द नहीं होते जब मैं आशुभा की बात करती हूँ, लेकिन ये उनका जो मोटिवेट करने का तरीका है, जो सबको उत्साह देने का तरीका है, सबको आगे बढ़ाने का तरीका है और सब इस सेवा में लगे रहे, इसके लिए जो उनका कन्विक्शन है कि ये सेवा, वो सिर्फ बोलते नहीं है कि ये हमको भगवान ने चुना है इस कार्य के लिए, ये वो मानते हैं, यही उनका भाव है। और जब इस भाव से वो हमको बोलते हैं तो हमको भी लगता है हम चुने गए हैं और इस कार्य के लिए हमको आगे बढ़ते जाना है। तो ये सबसे अच्छी एक बात है उनकी जो हमें बहुत मोटिवेट करती है, बहुत आगे बढ़ाती है।
1: रूपल दीदी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, और जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे समय कब क्रॉस करेगा हमें पता नहीं चलेगा, और वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और मैंने आपके इंट्रो में एक बात कही थी, संभवतः गिनी चुनी कन्याओं में है, मैं मानता हूं कि अद्वित वेदांत में आप नंबर एक पर इसलिए हैं क्योंकि आपके शब्दों में वो मिठास है, वो कशिश है, जो भी आपको सुनेगा, मैंने आपको आज सुना, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे अंतर मन में जितने भी प्रश्न थे जो मेरे व्यक्तिगत प्रश्न थे शायद उनके भी जवाब मिले, खास करके वो कि आप 7 दिन ये मान के चलें कि आपको किसी चीज से परेशान नहीं होना। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये कार्यक्रम हम जारी रखेंगे, हर शुक्रवार को 11:30 बजे दिन में होगा, भास्कर जी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर आशु गोयल जी हमारे साथ होंगे और मीनाक्षी दीदी होंगे और भी बहुत सारे लोग, हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले, क्योंकि आप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैं चाहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो गीता परिवार के कार्यक्रम होते हैं उनके साथ भी हम बात करें और इस कार्यक्रम को हम पूरे विश्व में लेके जाएं और साथ में हम अपने भारतवर्ष को फोकस करके इसको आगे की ओर बढ़ाएं। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं, और आपने आज इस कार्यक्रम में हमें इतना समय दिया, इतने सरल और इतने शुद्ध शब्दों से मेरा ये स्टूडियो जो है ये भी पावन कर दिया, और मेरे जो श्रोता है रेडियो वितस्ता के और हमारे जो सोशल मीडिया पर श्रोता है उनके साथ जो आपने संवाद किया बहुत खुश है, गदगद है। एक कमेंट में आपसे साझा करना चाहूंगा इजाजत लेने से पहले, रत्नाधर लिख रही हैं रूपल दीदी इज ऑल राउंड बेस्ट एंड इनका प्रवचन अति उत्तम, ब्लिसफुल एंड आनंदमय होते हैं। तो रत्ना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने रूपल जी तक पहुंचाई, अब हमारी ये रूपल दीदी है आज से, अब हम रूपल शुक्ल इन्हें नहीं कहेंगे, रूपल दीदी ही कहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए, समय के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम की जो प्रवाह है वितस्ता की तरह ऐसे ही चलता रहे और हम लोगों के मार्गदर्शन में अपना योगदान दें और आप आए, हम आपको बार बार आमंत्रण देंगे इस कार्यक्रम में। और भास्कर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लर्न गीता के साथ जोड़ने के लिए, गीता परिवार के साथ जोड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।
2: क्या बोलती है यार।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मेहरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सदियों का सफर तय करके जो बहती आई है वो मोहब्बत की कहानी सुनाने आई है। ये वितस्ता की लहरें हैं जनाब, जो रेडियो की तरंगों से दिलों को दिलों से मिलाने आई है, दिलों को दिलों से मिलाने आई है।
1: नमस्कार, आप सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई दोपहर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला आपका हमसफर भरत सोपोरी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना चाहिता स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो का, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी। वैसे भी जब भी फरमाइश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस कुछ चुनिंदा गाने बजेंगे और सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हमारे रेडियो वितस्ता का मिजाज थोड़ा अलग है ना, है ना?
0: बिल्कुल कृष्णा, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर गाने नहीं बजाते। गाना बजाना तो एक जरिया है, असल में हम आपके दिल के जज्बातों को, आपकी दबी हुई भावनाओं को शब्दों का रूप देकर आप सभी तक पहुँचाते हैं।
1: हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इन रेडियो तरंगों के माध्यम से एक ऐसा पुल बनाना है जहाँ दूरियाँ मिट सके। हम तो बस एक जरिया है दिलों को दिलों से जोड़ने का। आपकी खुशियाँ, आपकी यादें और आपकी मोहब्बत सब कुछ सिमट कर लाता है यह शो।
0: तो बस अपने दिल के तार हमारे साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी फरमाइशों का पिटारा अब खुलने वाला है। तो चलिए सुरों के इस सुहाने सफर का आगाज करते हैं और आज की पहली फरमाइश लेते हैं। पहली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। सईद मसरूर सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से गीत। गीत के बोल है, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत और करते हैं आगाज आज के फरमाइशी गीतों के सफर का।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधू। बंसीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जजबीर सिंह संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का गीत। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से आई है, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जहां प्यार मिले से गीत। गीत के बोल है चले जा चले जा। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए पेश है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्र रूप नगर बबियाल अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सहरा का गीत। गीत के बोल हैं तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाएं, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के जरिए आई है, और हमारे पास ये फरमाइश भेजी है संजीव कुमार राणा खेलन से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रतन से गीत, गीत के बोल है अखियां मिला के जिया भरमा के। इस गीत को आवाज दी है जोरा भाई अबाला वाली ने। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायड़े, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, इसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो रीजे पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।
1: मेरी मोहब्बत जवा

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से गीत। गीत के बोल है अनहोनी को होनी कर दे। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, किशोर कुमार और अन्य कलाकारों ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो हमारे पास आई है मेरठ से। भेजने वाले श्रोता हैं किरण और उनके साथ अन्य श्रोता हैं पिंकी, सुमन और ममता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत। गीत के बोल हैं, ये शमा तो जली रोशनी के लिए। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी के नाम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई महाराष्ट्र से भेजने वाली श्रोता है गीता, सुनीता, किरण, अमित, राजेश, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से गीत। गीत के बोल हैं ले तो आए हो सपनों के गांव में। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाली श्रोता है प्रेरणा, दीनू, पिंकी और अनूप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत। गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आपने आज का ये कार्यक्रम पहली बार सुना है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के लिए, हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आपको लिखना होगा गीत के बोल और अपना नाम, साथ में आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं, आप उनके नाम भी स्पष्ट लिखें और हम उन सभी नामों को आपके फरमाइशी गीत के साथ बोल देंगे। आपको अपनी फरमाइश भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजे वाले श्रोता है रणधीर भांगड़, इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी से गीत। गीत के बोल है, बाहों में बाहें डालकर खेलने का मौसम आया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिली का गीत। गीत के बोल हैं आए तुम याद मुझे, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं के लिए ले आ रहे हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है खेतल राजस्थान से। भेजने वाले श्रोता है लवीना शर्मा, धीरज शर्मा, हिताक्षी शर्मा और ओम शर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से गीत। गीत के बोल भी है अखियों के झरोखों से। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निशा सलमानी, इनके साथ अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर ने। तो लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये गीत। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यही हो रहा है समाप्त। आप आनंद लीजिए इस आखिरी गीत का और हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का। आने वाले कुछ क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है FM 90.0 MHz पर और हमारे प्रदेश के ज्यादातर सामुदायिक रेडियोज पर। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम ग्राम लेवल तक पहुंचकर गांव के बारे में जाने, जो गांव का मुखिया होता है वो अपने गांव के बारे में कितना जानता है, कितना काम करता है। कोशिश ये है कि वो अपने बारे में, अपने गांव के बारे में हम सबको बताएं, और अगर उस गांव में कोई अच्छा कार्य हुआ है उस कार्य के बारे में भी वो हमें बताएं। और हम कोशिश करते हैं कि इस रेडियो के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और साथ में आप सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा, अम्बाला के सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, अगर वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है या आपके आसपास कोई कमी है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इस कार्यक्रम का नंबर है 8816-904-904। कुछ क्षणों में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बनिए रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से, और हम प्रसारण करते हैं अंबाला से, और इस समय हम जुड़े हैं कार्यक्रम राम राम हरियाणा में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ वैसे ही देंगे जैसे आप हमेशा इस कार्यक्रम को देते हैं। ये कार्यक्रम हरियाणा के ज्यादातर सामुदायिक रेडियोज पर लाइव होता है, जैसे आप सभी इस समय लाइव है रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ में मैं पैनल पर सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रीतम जी नमस्कार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। गुरविंदर जी, और आज के हमारे जो मेहमान है शो के, बसी पंचायत की श्रीमती पूनम देवी जी, और साथ में एक और मेहमान है, उनके बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राम राम हरियाणा, और इस कार्यक्रम के लिए सभी श्रोताओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो हमें सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं, और साथ में हमारे श्रोता जो हमें रेडियो की आवाज के माध्यम से, रेडियो की तरंगों के माध्यम से हमें सुनते हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपनी कोई उत्कृष्ट कार्य की बात कहना चाहते हैं, या आपके आसपास कोई कमी है, आप हरियाणा सरकार तक उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें इस कार्यक्रम में कॉल कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम का नंबर है 88 16 904 904। आज है 12 जून 2026 शुक्रवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत। आज खास करके विश्व में बच्चों के जो हम काम कराते हैं, नाबालिग बच्चों से काम कराते हैं, उसके बारे में आज विश्व का दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी आज मनाया जाता है। तो आज हमें ये भी प्रण करना होगा कि हम जहां भी काम करते हैं, जहां भी हम जाते हैं, अगर वहां नाबालिग बच्चे जिनका समय स्कूल जाने का है, अगर उनसे कोई काम कराया जा रहा है, चाहे उनकी इच्छा से या उनके इच्छा के विरुद्ध, हमें सरकार तक वो बात पहुंचानी चाहिए, ताकि उन बच्चों को वहां से रिलीज करके उनको अपनी शिक्षा तक पहुंचाया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पुनः स्वागत और अभिनंदन। प्रीतम जी आप कैसे हैं, और कैसे माहौल, कैसा मौसम है चरखी दादरी में?
1: नमस्कार बार जी, मैं अच्छा हूँ, और हमारे यहाँ पे मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन हवा है जो वो ठंडी आ रही हुई है, टेम्परेचर लगभग 37-38 डिग्री के करीब है,
0: यानी कि मौसम सुहाना है, हम तो यही कहेंगे।
1: हाँ भारत जी, आप 2 दिन कहाँ थे, आपके ऊपर 2 दिन का ये फाइन लग रहा है।
0: फाइन देने के लिए हम तैयार है, कई बार तो हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, आप शायद चाहते नहीं है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, आज तो आवाज मेरी पहुंच रही है।
1: नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपकी आवाज पूरे वर्ल्ड में गूंजे, हमारे तो नहीं हो सकता कि हम चाहते नहीं।
0: जी जी, हमारे लिए तो ये कार्यक्रम सबसे सर्वोपरि है, और बट कई बार हमारी घर की व्यवस्था, जो हमारी व्यस्तता होती है, उसकी वजह से हम नहीं आ पाते हैं, बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे गुरविंदर जी का, और उम्मीद करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय में। हमारे साथ अजमेर ग्राम सचिव भी हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गुरविंदर जी आपसे अनुरोध करूंगा, आपका स्वागत भी है, आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आज के मेहमान हमारे साथ हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: धन्यवाद भक्त जी।
0: जी धन्यवाद।
2: राम राम हरियाणा चैनल में आज के इस हमारे जो आज का प्रोग्राम में इसमें जुड़े सभी श्रोता हैं, और हमारे पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला। जैसे कि हम डेली एक जो ग्राम पंचायत है, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत है हमारे हरियाणा की, उसको हम इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं, ताकि और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो प्रेरणा लेके आगे अपने गाँव में विकास कार्य करा सके। उसी क्रम में आज हमारे साथ ग्राम पंचायत बसी अकबरपुर है, विकास खंड ग्राउंडा जिला करनाल की, वहां से मैडम पूनम देवी दलाल जी जो सरपंच हैं, जो ग्रेजुएट हैं, इन्होंने टीचिंग का JVT कोर्स भी किया हुआ है, वो जुड़े हैं, अपने गांव की कमान 80 से संभाले हुए हैं, तो इनके साथ ही इस पंचायत के जो ग्राम सचिव हैं, मतलब जो इनके ऑफिस वीर, जिनको हम जो उनके दफ्तर का सारा कामकाज संभालते हैं उनको भी हमने जोड़ा है। हम दोनों हमारे जी मेहमानों का स्वागत करते हैं कि इन्होंने बड़े थोड़े समय में इस प्रोग्राम में हाजिर हुए। और मैं गुजारिश करूंगा जो आज के हमारे सरपंच है मैडम पूनम देवी दराज जी, वो अपने गांव के बारे में और जो जो कार्य इन्होंने अपने गांव में करवाए हैं और गांव की कोई और भी दिक्कतें उसके बारे में बताएं अपना परिचय देते हुए। मैडम पूनम देवी जी।
0: जी पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर। और आज के कार्यक्रम के मेहमान आज हैं आप और हम यहाँ सभी और हमारी श्रोता जो पूरे हरियाणा में हैं वो आपको सुनने के लिए आज यहाँ पर होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपके बारे में वो जाने, आपके गांव के बारे में जाने। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी महिला सरपंच होती हैं उनसे सबको ज्यादा उम्मीदें होती हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कार्य करते होंगे खुद करते होंगे, जैसे ग्राम सभा में जाना, ग्राम सभा को बुलाना और गांव के बारे में सारी जानकारी आप रखते होंगे। और आशा यही करते हैं कि आप अपने बारे में और अपने गांव के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम तो केवल एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद आपको विस्तार में बताना, हम सब आपको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर आपके पास फैन चल रहा है तेज से, उस फैन की आवाज यहाँ पे आ रही है, या तो उस फैन की आवाज कम करिए, उसको स्पीड कम करिए, ताकि हमारे पास यहाँ पे आपकी जो आवाज है वो आराम से आ सके। तो पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप अपने परिचय के साथ शुरू करें और अपने गांव के बारे में बता सकते हैं।
3: मेरी सभी को नमस्ते।
0: नमस्ते। आपके आसपास, एक मिनट, आपके आसपास कोई रेडियो चल रहा है उसको ऑफ करना होगा क्योंकि वो जो वॉइस है वो इको हो रही है। आसपास आपके कोई भी रेडियो या कोई भी आवाज अगर है उसको आपको बंद करना होगा। जी जी बोलिए।
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
3: मैं गांव बसी अकबरपुर से सरपंच पूनम देवी दलाल, मेरे तहसील गरौंडा और जिला करनाल जी। क्वेश्चन जी आप करोगे?
0: नहीं नहीं, क्वेश्चन हम करेंगे, हम आपको सुनने आए हैं और आपके आसपास जो रेडियो चल रहा है वो उसकी आवाज अभी भी आ रही है, उसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज जब आप बोलते हैं वो एक बार फिर आवाज आती है वहां से। आपके आसपास कोई रेडियो की आवाज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम सिर्फ आपसे सुनना चाहते हैं, आप विस्तार में बताइए अपने गांव के बारे में, वहां पे वोट कितने हैं, आप किस तरीके से अपने गांव का कार्य करते हैं, आपने गांव में कोई ऐसा कार्य किया है जब से आप सरपंच बने हैं जो इससे पहले नहीं हुआ था। हम केवल सुनेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं आपसे हम प्रश्न करें। आप अपने जो आपकी अपनी जो बात है उसको रखिए खुल के। जी
3: सर, हमारा पहले इकट्ठी ग्राम पंचायत थी चार गांव की, आपके बाद जो हमारी पंचायत है ये अलग हुई है, पहली बार फर्स्ट टाइम गांव में
0: जी।
3: तो बहुत सारे गांव में काम थे, हमने जी गांव को देखते हुए बहुत सारे काम भी किए हैं और आगे प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा काम है। तो जी हमने जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल का आंगन कच्चा था उसको पक्का करवाया, उसकी चार दीवारी करवाई, वहां पानी का प्रबंध करवाया, बच्चों के शौचालय बनवाए, ये हमें जी सरकारी स्कूल में काम किए हैं। और जी उसके बाद जैसे गांव के सामाजिक निजी कार्यक्रम होते हैं, बैंक के ठाल है जी उसकी मरम्मत करवाई, वहां पे जी चार दीवारी को अच्छी तरह से करवाया और दो उस पे मेन गेट लगवाए जी स्टील के बनवा के, तो उसमें जी बिजली का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया, जी जो सुविधाएं होती है जैसे गाँव में शादी प्रोग्राम होती है तो हमने उसको देख के अच्छा किया वहां पे भी। और जी गांव में जैसे जगह जगह पर वाटर कूलर लगवाई है, भई गर्मी का मौसम है तो जी पानी पी ले आम पब्लिक है। और जी उसके बाद जैसे आम आदमी के कागजी कार्रवाई काम हेतु हमने गांव में एक सीएससी सेंटर खुलवाया जिसमें उसमें सीपीएलओ बिठाया दफ्तर पर, वहाँ आम पब्लिक के अपने छोटे मोटे काम वहीं पर हो जाते हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जी गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए जी बरसाती सीजन में जैसे सार्वजनिक जगह पर पेड़ पौधे उनकी कटिंग करवाई, और जी कीटनाशक दवाइयां भी डलवाई जी। हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने गांव के अंदर भी कोई बीमारी वगैरह पैदा ना हो जिससे हम पब्लिक परेशान हो सके। और
0: जी पूनम जी,
3: जी गांव के
0: जी पूनम जी, आप जिस तरीके से आपने गांव की रूपरेखा आप रख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और खास करके अब हमारे देश में जो भी कोई फैसला होता है उसमें महिलाओं का जो भाग है यानी कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब सरपंच बने क्या आपने पहले से सोचा था कि आप सरपंच बनेंगे, या आपके आसपास ऐसा माहौल था जिस वजह से आप लोगों से आपने संपर्क किया फिर आपको वोट दिया गया? तो आप कितने साल से सरपंच है अपने गांव के? जैसे आपने कहा कि आपका गांव अब अलग हुआ है तो आप प्लीज वो दोबारा बता दीजिए।
3: अब पहली बार हुआ जी, नई पंचायत बनी है, नए नए काम हुए हैं और हमारे जी बिल्कुल नहीं था कि हम सरपंच बने, लेकिन गांव की सर्वसम्मति बनी जी तो हम सरपंच बन गए। लेकिन जो गांव में आपने पता है रातों रात माहौल बदल जाता है, तो जी फिर चुनाव हुए, जिस चुनाव में भी फिर हम जीत गए। इससे जी फिर हमने गांव को ध्यान रखते हुए हमने वहां पे सोचा समझा काम किए जी।
0: बहुत अच्छी बात है। और जैसे हमारे पैनल पर हमारे साथ चरखी दादरी से अपना रेडियो से प्रीतम जी है, वो भी आपसे बात करेंगे। मैं आपसे ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि जब आप इलेक्शन जीत गए, आप सरपंच गांव के बने, क्या आपके गांव में सचिवालय है जहां से आप काम करते हैं या आप अपने घर से काम करते हैं?
3: जी हम घर से काम करते हैं, यही तो हमारे गांव के अंदर जी एक मेन प्रॉब्लम है कि पंचायती जगह नहीं है जी, शिवालय भी नहीं बना सकते, बस सिर्फ एक बैंकेट हॉल है और एक तालाब है,
0: जी
3: एक आधे जी छोटा मोटा टुकड़ा है और जी है नहीं जी पंचायती जमीन गांव के
0: चलिए
3: अंदर।
0: इसके बारे में भी आपसे जानेंगे, जोहड़ों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार आज के डेट में पंचायत में हर प्रयत्न करता है कि हर कोई चीज होनी चाहिए, जैसे ई लाइब्रेरी है, या जब आप ग्राम सभा करते हैं तो आपके पास सचिवालय होना चाहिए। आप जब इन चीजों का समाधान ढूंढेंगे, अगर आपके पास जमीन पंचायत की होगी या आप पंचायत के लिए कोई जमीन खरीद सकते हैं या कुछ भी तरीका होगा तो सचिवालय बन सकता है। प्रीतम जी आप बात करिए पूनम जी से और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
1: नमस्कार पूनम जी।
3: हाँ जी नमस्कार जी।
1: आपको चरखी दादरी में भी सुना जा रहा है अपना रेडियो के ऊपर। मेरा आपसे एक सवाल था, आपने कहा कि सर्वसम्मति से आपके पहले चुनाव हो चुका था लेकिन रातों रात माहौल बदला,
3: हाँ जी
1: ये रातों रात माहौल कैसे बदला, क्या बात,
3: क्योंकि
1: आपको कहाँ से बताइए। चलो
3: क्योंकि जी जो बनना चाहते थे इच्छुक थे उन्होंने सोचा कि ये मौका मैं क्यों नहीं मिला, इसके लिए जी फिर गांव में चुनाव हुआ।
1: अच्छा, आपने देखो आपके ऊपर सर्वसम्मति बन चुकी थी, चलो वो एक इलेक्शन होना वो एक प्रक्रिया है। आपने जब पूरे गांव की सर्वसम्मति थी तो आपके कार्य करने का जो एजेंडा था कि गांव ने आपके ऊपर विश्वास किया इतना आपके ऊपर कि आपके ऊपर सर्वसम्मति बन रही थी, फिर आपका कार्य करने का जो एजेंडा था वो क्या था कि प्राथमिकता से पहले ये काम करवाया जाए, और वो काम हुआ या नहीं हुआ अब तक?
3: बहुत सारे काम जी हुए भी है और जी चल भी रहे हैं, आगे भी होंगे।
1: प्राथमिकता जो पहले करने का था कि सर्वसम्मति गांव में पानी के लिए, शिक्षा के लिए, या
3: बच्चे स्कूल का आंगन पक्का करवा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जी, प्राइमरी स्कूल है वहां पे, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती जी पानी की भी, और कच्चा ग्राउंड था जी, ये आपको पता है आंधी रेत मिट्टी बच्चों को परेशान करती है, तो हमने पहले वो किया। फिर बैंकेट हॉल को देखा जी, उसमें भी बहुत सारे कार्य करवाए, और जी पाइपलाइन है जो हमारे गांव के अंदर 25 साल पुरानी है, वो कहीं कहीं से लीक होती है, अब हमने उसको भी भाई इसको दोबारा से दबवा जाए, तो जी धीरे धीरे गाँव। अभी
1: जो आपने पाइपलाइन दबाई है वो किस स्कीम के तहत दबाई है?
3: अभी जी दबी नहीं है, वो एस्टीमेट बनवा दिया जी उसका, वो अब होने वाला है
0: जी। मैडम आपसे हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ जो ग्राम सचिव जुड़े हैं, अगर उनके पास थोड़ा सा समय हुआ हमारी तरफ भी देखें, और अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है वो कहीं और इस समय देख रहे हैं, और आपने ग्राम सचिव जी, जो आपने पीछे आपके लाइट है वो बहुत तेज है, या तो उस पर कोई पर्दा लगाया जाए ताकि आपकी जो शक्ल है वो हम अच्छे से देख पाए और आप हमसे बात कर पाए। कार्यक्रम के 15 मिनट हो गए हैं, अभी भी आपने अपना जो कैमरा है और अपना मोबाइल है उसको सेट नहीं किया है। खैर हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है ग्राम सचिव जी? ग्राम सचिव जी, आपके आसपास जो रेडियो ऑन है उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी आवाज वापस आ रही है। अगर आप कार्यक्रम में है तो आप यही काम कर दीजिए, बाकी काम आप बाद में कर दीजिए। आप ना तो इस कार्यक्रम की तरफ मुझे लग रहा है कि देख रहे हैं, ना आपको यहाँ की तरफ दिलचस्पी। खैर, हम आपसे बात करते रहेंगे। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं और महिला होते हुए आप बच्चियों के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके का उनका ख्याल होना चाहिए? जैसे सिक्योरिटी है, शिक्षा है, और जब वो स्कूल जाते हैं तो गांव में कैसा माहौल है कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि आने वाले दिनों में या अब ऐसा भी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब बच्चियों को स्कूल जाने में कई बार दिक्कत होती है। तो आपके गाँव में कितने वोटर्स है, कितनी आबादी है और कितने स्कूल है, आप इस बारे में बता दीजिए।
3: जी, हमारी वोट है अब जो नई बनी है 1200-1250 करीब हो गई है, पहले 850 तो बहुत सारी नई वोटें बनी है
0: जी।
3: और जी आबादी हमारी 1700-1800 के आसपास है गांव की।
0: जी जी,
3: हाँ जी।
0: 1200 जिस गांव में वोट होते हैं वो बड़ा गांव माना जाता है, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि भारत देश में जिस गांव का सरपंच होता है वो उस गांव का प्रधानमंत्री होता है, तो आपको जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो मैं स्कूल के बारे में पूछा था, जो स्कूल है वो कहाँ तक है और उसमें कितने बच्चियां हैं या लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं एक ही स्कूल में?
3: प्राइमरी स्कूल है जी, छोटे बच्चों का, ये 5वीं तक है, तो 100 के आसपास ही बच्चे हैं जी।
0: जी, तो उनके टीचर्स, आप जब स्कूल में जाते हैं तो क्या आप देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई किस लेवल की मिलती है, उसके बारे में बता
3: दें। बच्चों को नॉलेज है, जैसे 26 जनवरी को जाते हैं, 15 अगस्त को जाते हैं, बीच बीच में भी जी जाते हैं, कोई प्रोत्साहन करना हो बच्चों, जैसे रिजल्ट आता है तो अच्छा परिणाम होता है, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उनको जी नॉलेज है, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे जी, अच्छा है।
0: मैडम आप रुकिए, एक कॉल आ रहा है, देखते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: हेलो सर, मैं ममता बोल रही हूँ।
0: हाँ जी ममता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए ममता जी, आपको तो आपको आवाज से ही पहचानते हैं कि ममता जी चरखी दादरी से बोल रही हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं?
4: सर मैं पूनम मैडम से ये पूछना चाहती हूँ, मैम बता रही है मैंने ये किया, मैंने महिलाओं के लिए क्या किया? करनाल में तो घर में ही बैठ बैठ के महिलाएं काम करती है, उनके लिए अलग से कोई वो नहीं बनवाया गया कोई?
0: जी पूनम जी, जी पूनम जी, आपने सवाल सुना होगा ममता जी का, ये चरखी दादरी से हमेशा हमें कॉल करती हैं, आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
3: जी हमने बहुत सारे, जैसे अब महिला चौपाल बनवाने के लिए हम जागृत हुए, क्योंकि हमने देखा है कि गांव में महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके बैठने उठने की जगह नहीं है। अब हमने एक महिला चौपाल भी जिसके लिए बनवाने का काम प्रोसेसिंग पे डाला है, और जी गांव में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हों प्रोत्साहन दे रहे हैं जी, गांव में जैसे छोटे मोटे लघु कार्यक्रम है, अचार डालना, ये इस तरह के जी लेडीज आके ग्रुप बना रखे है गांव में, तो वो अपने कार्य जी एकजुट होकर करती है महिलाएं
0: जी।
4: यही तो वहाँ की महिलाएं अचार और बड़ी और ये सामान ज्यादा बनाती है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ उनके लिए बैठने के लिए अलग से नहीं कोई?
3: नहीं जी की नहीं, पर हमने जी सोचा जी, उसका एस्टिमेट भी बन चुका जी, वो बनेगी, पर जी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हमारे गांव में जी, इस करके
0: जी। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कॉल किया और आपने पूनम जी से सवाल किया। मैं साथ ही वीरेंद्र सिंह चौहान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर आपके बगैर हम यहां अधूरे से लगते हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। आप आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए और साथ में मैं गुरविंदर जी अगर सुन रहे हैं तो वो ग्राम सचिव जी को पहले जरूर बताएं, वो आधे घंटे से 20 मिनट हो गए कार्यक्रम के, अभी उनका मोबाइल सेट नहीं हो पा रहा है, ना वो इधर कार्यक्रम की तरफ देख रहे हैं ना उनकी कोई आवाज आ पा रही है, तो कृपया उनको समझाएं ताकि वो दोबारा कनेक्ट करें। डॉक्टर वीरेंद्र सर आपका एक बार फिर स्वागत अभिनंदन।
5: भरत जी राम राम। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मान लीजिए फ्रेम में ना हूं, मान लीजिए मैं कार्यक्रम में ना दिख रहा हूं, तो भी मैं इस कार्यक्रम में तो होता ही हूं, मेरा मन जो है वो इसी में पड़ा रहता है। मैं कभी कभी चलते चलते सुन रहा होता हूं, किसी कार्यक्रम में बैठे बैठे सुन रहा होता हूं, देख रहा होता हूं। आज दुर्योग से इसी अवधि में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, राम राम हरियाणा का जो समय है, मुझे 3 जगह उपस्थित रहना है। अभी अभी हमारे यहाँ संस्थान में वीबीजी राम जी जो मनरेगा समाप्त हो रही है और वीबीजी राम जी नई योजना आ रही है 1 जुलाई से, उसके लिए जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जरूरत है, नई योजना है ना भारत जी, तो हमें सरपंचों को और ग्राम सचिवों को और संबंधित विभागीय जो इंजीनियर है उन सबको बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा में ट्रेन करना है। शायद ये आंकड़ा 19,000 के लगभग कर्मचारी अधिकारी जन प्रतिनिधियों का है, उन लोगों को जो लोग प्रशिक्षित करेंगे उनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पिछले 4 दिन से 2 समूहों में हुई है, तो दूसरे समूह की के प्रशिक्षण का अभी समापन सत्र था, उसमें से मैं निकल करके आप लोगों को राम राम करने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और सरपंच साहिबा को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका गाँव कौन सा है जरा गाँव बता दीजिए एक बार।
3: बसी अकबरपुर जी, गरोंडा, जिला करनाल।
5: गरोंडा का बसी अकबरपुर
3: जी, तहसील गरोंडा जी।
5: हाँ जी हाँ, तहसील भी मना बेरा और जिला भी बेरा आपका और विधानसभा भी बेरा है। मुझे बस ये पूछना है आपसे कि आपके गांव में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं बसी में?
3: समुदाय जी 8 है, 9 जाति के समुदाय है जी, नहीं 12।
5: अच्छा, अभी वहाँ कोई मुस्लिम आबादी है क्या वहाँ?
3: नहीं जी, नहीं।
5: तो एक काम करिए ना सरपंच साहिबा, मेरा सुझाव मान लीजिए, अगली बार जब पंचायत की बैठक हो और फिर अगली ग्राम सभा हो, ये अकबर जो है आपके गांव के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये गुलामी के दिनों की निशानी है, इसको निपटाओ, परे करो।
3: जी हमने रामपुर सोचा है, लेकिन है ना पता है आम पब्लिक है जो गांव के अंदर है, तो वो ये सोचती है अब हम कितने घूमेंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स में इसको चेंज करवाएंगे, तो काफी लंबे टाइम से
5: ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप सुनो मेरी बात, ये तो सरकार के करने का काम है। हमने हरियाणा में बहुत सारे पुराने ऐसे नाम जिनमें गुलामी की निशानी झलकती थी, गुलामी का दौर झलकता था, अब कई शहरों और गांवों के नाम हमने बदले हैं, और सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, किल्लत होगी, गुलामी की निशानी छाती पे और सिर पर धर कर कंधे पे धर कर गिल्लो गिल्लो राखनी के जरूरी है।
3: बस जी हमने भी बस रामपुर नाम सोचा है जी।
5: आप प्रस्ताव पारित करिए, बाकी चीजें समय के साथ ठीक हो जाएंगी।
3: पर जी गांव के अंदर जैसे ग्राम सभा मीटिंग होती है उसमें ये बोलते हैं कि हम कितना घूमेंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाएंगे।
5: आप उस गांव की नेता हैं, आप जब उनको समझाएंगी और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे समर्थन की जरूरत है तो मुझे बताइएगा ग्राम सभा में, मैं आके गांव वालों से बात कर लूंगा। कितनी वोट का गांव है आपका?
3: हमारा जी पहले तो थी 850 के आसपास जी, नहीं वोट है 1200 के आसपास है सर।
5: 1200 वोट का गांव है। आप जब अगली ग्राम सभा रखो उस समय मुझे सूचना भिजवाइएगा, मैं चल के आऊंगा और हम ग्राम समुदाय को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे कि गांव का नामकरण जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए गांव के नाम का। जी भारत जी कुछ कह रहे हैं?
0: मैं मैडम को ये कहना चाहूंगा कि जब एक सोच बनती है, जब हम उस पर कार्य करते हैं तो रास्ता ऑटोमेटिकली बनता है। एक समय पर हमारे घर में हमारी कलर फोटो नहीं होती थी, अब जैसे जनगणना है या हम बीमे का जब फॉर्म भरने जाते थे, क्योंकि मैं बीमे से जुड़ा रहा हूं, तो जब हमें कहा गया कि अब आपको हर बीमे के साथ व्यक्ति की फोटो लगानी है, हमने कहा ये तो एक और अड़चन आ गई। और आप मानिए कि जब हम लोगों के पास गए, हमने फोटो मांगी, उन्होंने एक के बजाय तीन दे दी। जब आपके गांव के नाम का शुद्धिकरण होगा तो लोग खुशी खुशी अपनी डॉक्यूमेंट्स को चेंज कराएं। उसके लिए इसी सेंटर आपके गांव में है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं आधार को चेंज करने का। खास करके आधार ही हमें एड्रेस नाम चेंज करना है, तो और ऐसे सिचुएशन में सरकार भी आपको प्रेरित करती है। और जैसे वीरेंद्र सर ने कहा, बस यही कहना चाह रहा था। प्लीज सर आप कंटिन्यू करिए।
5: चलिए बहुत अच्छा। दूसरा

0: महिलाओं के की गतिविधियों के केंद्र हरियाणा सरकार बनवा रही है गांवों में। बहुत सारे गांवों से प्रस्ताव लिए गए हैं, बन भी गए हैं, कुछ स्थानों पर और बन रहे हैं। जो आप महिला चौपाल कह रही है, महिला सांस्कृतिक केंद्र से कुछ अलग चीज होगी क्या?
1: नहीं जी, सेम ही है। उसमें जैसे चौपाल होगी तो उसमें अपनी महिला कुछ भी कर सकती है।
0: तो महिला सांस्कृतिक केंद्र के को ही आप महिला चौपाल कह रही है, ये माना जाए?
1: हाँ जी।
0: तो कब गया आपका प्रस्ताव इसका बनके?
1: हमारा ये हमारे सेक्रेटरी साहब को पता है जी, पास में बैठे हैं, ये बोल रहे हैं।
0: ये अजमेर सिंह जी आपके सेक्रेटरी क्या?
2: अरे अरे अरे अरे, हेलो गुरविंदर जी, इनको कोई जानकारी नहीं है कैसे ऐड होना है। ये जब भी ऐड हो रहे हैं तो ये नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। इनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि इससे हमारा कार्यक्रम खराब हो रहा है।
1: नहीं जी, जो मेरे सेक्रेटरी साहब ये मेरी जगह एक मिनट ये बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पास में बैठे।
2: जी जी जी।
0: अच्छा, पास बैठे हैं तो यही आ जाए, कोई बात नहीं।
2: जी जी,
1: ये
0: गुरविंदर जी कभी भी एक जगह पे बैठ के दो लोगों को स्टूडियो में एंटर करने के लिए नहीं कहना, अन्यथा फिर यही होगा जो आज हुआ। हाँ भाई अजमेर सिंह जी, बताओ क्या खास बात है इस गांव की, क्या क्या अच्छे काम हुए हैं यहाँ?
3: नमस्कार जी सर।
2: नमस्कार।
0: नमस्ते।
3: पहले चार गांव की पंचायत थी जी, ये अब की बार नई पंचायत बनी है, उसमें ये पूनम देवी दलाल महिला सरपंच बनी है जी।
0: अच्छा।
3: पहले तो इनको सर्वसम्मति से बनाया जा रहा था, फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में भी इनको जीत हासिल हुई। और गांव में जो पंचायती जमीन नहीं है, अपने कोई संसाधन नहीं है, जो सरकार से ग्रांट मिलते हैं उनसे ही कार्य होते हैं
0: जी।
3: अभी महिला चौपाल के लिए रेजुलेशन दिया गया है जी, गांव में महिला चौपाल बनाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीजे हैं उनको बैठने में दिक्कत आ रही है, वो कभी आंगनबाड़ी में बैठती हैं, कभी CSC में बैठती हैं, कभी बैंकेट हॉल में शादी हो तो उनका दिक्कत आ जाती है। महिला चौपाल के लिए रेजुलेशन दिया है सर।
0: चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, महिला चौपाल और महिला सांस्कृतिक केंद्र, हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या?
3: एक ही है सर, ये महिला सांस्कृतिक केंद्र, महिला चौपाल, वहां अपने कोई भी प्रोग्राम कर लें या अपनी बैठक कर लें, उसके ऊपर ही लाइब्रेरी बनाई जाएगी जी।
0: तो उसके लिए आपने बिल्डिंग दी होगी ना? कोई
3: बिल्डिंग नहीं है सर, बनानी है बिल्डिंग।
0: पैसा कौन सी स्कीम में आएगा? इसमें
3: डी प्लान में आएगा सर।
0: दिलवा दिया स्पीकर साहब ने क्या?
3: हाँ जी,
0: मंजूर हो गया।
3: हो गया जी।
0: कितना?
3: 10 लाख रुपए जी।
0: 10 लाख रुपए में दोनों चीजें तो नहीं बनती?
3: नहीं, महिला चौपाल के लिए दिया जी, उसके बाद ई लाइब्रेरी के लिए बाद में होगा, जो बन जाएगी उसके ऊपर ही बनेगी जी। गांव में जगह नहीं है, खाली पंचायती जमीन नहीं है।
0: अच्छा चलिए, एक मैंने जो ये बात कही ना कि संभव हो तो गांव को कन्विंस करके गांव के नाम का शुद्धिकरण जरूर कर दो।
3: ये ग्राम सभा में भी रेजुलेशन हुआ था जी, कहा था कि
0: पारित हो गया था क्या?
3: हाँ जी, पारित हो गया था जी, बस ये गुरपुर के नाम से।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और क्या योजनाएं हैं इस गांव में जो आप लोग सोचते हैं, आप हैं सरपंच साहिबा हैं या ग्राम पंचायत, बेहतर करने के लिए?
3: गांव में गंदे पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं है जी, तालाब है बहुत छोटा है, उसको बार बार खाली करवाया जा रहा है। साथ में लगती जमीन है, वो पर्सनल है, वो कभी निकलने देते हैं कभी नहीं निकलने देते हैं।
0: तो गंदे पानी की निकासी, आपका तालाब एक ही है?
3: एक ही है सर,
0: एक ही तालाब है, और उस तक पानी पहुंचाने वाली नालियों का क्या हाल है?
3: नालियां तो ठीक हैं सर, लेकिन वो ओवरफ्लो हो जाता है जब उसका पानी निकालना पड़ता है।
0: कहाँ निकालते हो? कहाँ निकालते हो? कैसे निकालते हो?
3: ब्लॉक से मोटर ले जाते हैं सर, मोटर लगी मिली हुई है ब्लॉक में।
0: नहीं, लेकिन आप कहाँ उस पानी को गिराते, कहाँ हो मोटर लगा के?
3: पर्सनल जमीन में जी, लोगों की उनसे बात करके, उनसे पूछ के
0: लोग राजी हो जाएं।
3: हाँ, निकलने देते हैं सर, गांव की समस्या है, गांव की समस्या को देखते हुए।
0: तो फिर आपका ये इस तालाब में गंदा पानी है, गंदे पानी को आप सीधा खेत में डाल देते हो, ये कैसे चलेगा और कब तक चलेगा?
3: इसके लिए कोई
0: पानी को

0: को, गंदे पानी को अगर आप खेत में डालना चाहते हो, रिसाइकल करके रीयूज करना चाहते हो भाई साहब, तो वो तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए पहले। क्यों भारत जी?
1: जी कुछ कमेंट्स आए हैं इसी संदर्भ में, कुछ कमेंट आए वो मैं आप पढ़ के बताना चाहता हूँ।
2: एसटीपी के लिए जगह नहीं है सर लगाने के लिए।
0: हाँ सुनिए, एक क्षण सुनिएगा, कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ दें जी।
1: ललित ललित उत्तम जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया विचार है चौहान जी का, जब आपने शुद्धिकरण की बात, नाम के शुद्धिकरण की बात की थी, और उसके बाद वो लिख रहे हैं तुरंत प्रभाव से इससे किया जाना चाहिए। विकास बंसल जी कह रहे हैं नमस्कार गुरु जी, और ललित जी पूछ रहे हैं कि महिलाएं तो जहां बैठती है वहीं चौपाल बन जाती है, और साथ में लिख रहे हैं गंदे पानी की निकासी के बजाय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये कमेंट मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था जी।
0: हाँ देखिए, इसको यूं समझना चाहिए, पानी घट रहा है, पानी दूषित हो रहा है, पानी आवश्यकता से कम उपलब्ध है। ठीक है, आप लोग जमुना की तरफ वाले हो सके, आपका पानी थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन गांव से गंदे पानी की निकासी की जब हम बात करते हैं, तो गंदे पानी को निकाल के और गंदे का गंदा कहीं खेत में या किसी ड्रेन में आप डाल दोगे, ये चलेगा नहीं। ये पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली बात है। आवश्यकता इस बात की है कि आप जो गांवों का गंदा पानी है या बरसाती पानी है, उसको कहीं एक स्थान पर इकट्ठा करें, एक जोड़, जैसे आप तो कह रहे हैं कि आपके तो जोड़ ही एक है, और उसको पानी को आप ट्रीट करें। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके यहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जगह नहीं है,
2: नहीं है सर, जगह नहीं है सर।
1: वीरेंद्र सर ऐसे
0: ऐसा
1: ऐसे
0: क्या है कि गांव में
1: वीरेंद्र सर ऐसे सिचुएशन में क्या होता कि अगर किसी गांव में पंचायती जमीन नहीं है पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान होता है सरकार उसके लिए भी जमीन लेने के लिए भी कोई सहयोग देती है? मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है इसलिए मेरा प्रश्न ये है।
0: बहुत सारे गांव हैं ऐसे भारत जी, जहां सार्वजनिक सामूहिक कामों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। कुछ
1: जी
0: गांव तो हैं जिनके पास 300 400 एकड़ जमीन भी है, किसी के पास 50 60 70 एकड़ भी है, लेकिन कई जगह ऐसे गांव भी हैं जहां जमीन है ही नहीं। तो अब वहां अगर कोई साझे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मान लीजिए अस्पताल बनाना है, मान लीजिए पशु अस्पताल बनाना है,
1: या
0: डिस्पेंसरी
1: सचिवालय
0: बनानी है, तो उस सूरत में जमीन खरीदना यही एक विकल्प बचता है।
1: जी
0: ये जो हमारे सचिव महोदय हैं अजमेर जी, यही बताएंगे कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास, किसी और गांव में अड़ोस पड़ोस में क्या किया गया है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए।
2: जमीन को अधिग्रहण ही किया जाना है जी
0: नहीं, अधिग्रहण
2: साथ
0: किया जाना चाहिए, ये तो सरल बात है, लेकिन
2: जी।
0: क्या हमारे यहाँ घरोंडा में या जहां कहीं आप आज तक पोस्टेड रहे हैं, किसी गांव में आपको उदाहरण याद आ रहा है जहां जमीन अधिग्रहित की गई हो, खरीदी गई हो?
2: इसके लिए दूसरे गांव से एक तालाब है सर, उसको उसकी मांग की गई थी कि भाई पाइपलाइन दबा दें उसमें पानी चला जाए, तो उस गांव ने मना कर दिया सर। साथ लगता गांव है
0: कौन सा गांव है?
2: मलिकपुर गाद्यान
0: मलिकपुर
2: गादियान
3: 550
0: गादियान। तो स्वाभाविक है, वो क्यों, वो तो न्यू कहेंगे मारे क्यों भेजो गंदा पानी।
1: जी
0: नहीं, ये जो भारत जी ने सवाल पूछा, क्या जमीन एक्वायर की जा सकती है, साधारणतया जहां तक मेरी जानकारी और समझ है भारत जी, ग्राम पंचायतों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वो जमीन एक्वायर करेंगे और उसके लिए जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो दे पाए।
2: नहीं सर ऐसा
0: उनको इसके
2: कोई
0: लिए फिर राज्य सरकार की तरफ देखना पड़ेगा, और राज्य सरकार जो है वो उधर से पहली बारी में तो यही कहेगी अपने साधनों से करो, अपने साधन होंगे नहीं, ना रात क्या बोलेंगे, ना नोमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्यों अजमेर भाई, यही स्थिति है ना?
2: यही है सर। 40 MLD नाला लगता है जी साधनों के लिए बोला था, तो उसमें उन्होंने भी वो बोला वे ट्रीट करके भेजो, ट्रीटिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं है सर।
1: सर सर प्रीतम
4: सर,
1: जी
4: इसमें तो एक ही रास्ता बचता है।
1: जी जी
0: हाँ बताइए।
4: इसमें एक ही रास्ता है, या तो जिस ग्राम पंचायत के पास आमदन होती है वो आमदन से कोई जमीन खरीद सकती है, या दूसरा एक रास्ता ये है कि उस गांव का कोई जो व्यक्ति है
1: वो अपनी से
4: जमीन वो दान में दे,
1: स्वेच्छा से वो जमीन में दे
4: के लिए पंचायत घर के लिए या जो पानी का, दूसरा जो गांव है वो नहीं देगा। इसी गांव का जिसके पास जमीन 80 हो, कई बार हमने देखा है कि वो स्कूल के लिए दान कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए दान कर देते हैं। ये अपने गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं या और मजे लोग हैं, वो किसी को मतलब ऐसे मोटिवेट करके जमीन दान में लेके उसके ऊपर वो बनवा सकते हैं
1: जी।
4: अदरवाइज तो बड़ी
1: मैं भी यही कहना चाह रहा था कि स्वेच्छा से अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो कुछ लोगों को सामने आना होगा या एक व्यक्ति को आना होगा जो उस जगह के लिए, अगर चौपाल बनना है या स्कूल बनना है तो उसके लिए आमतौर पर, या ट्यूबवेल बनना होता है, एक छोटी सी जगह भी अगर नहीं है तो उसको भी लोग दान में देते हैं ताकि गाँव के लिए एक रास्ता बने, ट्यूबवेल लगाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए या ग्राम सचिवालय बनाया जाए, और इस तरीके से किया जा सकता है। प्रीतम जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी
3: प्रीतम से इतने पूछना चाह रहा था, सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि इन्होंने दूसरे गांव में जो गंदा पानी का प्रबंध किया, तो ऐसा कहीं है कि अपने गांव का विकास तो होता है किसी गांव का, और दूसरे गांव में एक, मैं हरियाणा में कहता हूँ विनाश के लिए नहीं कि गंदा पानी दूसरे गांव में जाए, ऐसा प्रस्ताव आपने बनाया तो ये कहां तक उचित था?
2: उसके पास खाली जगह है जी उस गांव के लिए, वो गांव से दूर है, तालाब खाली है।
3: सेक्रेटरी साहब कोई भी गाँव हो वो अपने गाँव का विकास के लिए, अगर वहां उस गाँव में आप हॉस्पिटल खुलवाओगे या वहां कोई कंपनी लेके आओगे तो जमीन दे देंगे, लेकिन दूसरे गांव की ये है कि गंदे पानी के लिए अगर कोई निकालेगा तो कोई जमीन नहीं देता।
2: पहले एक ही पंचायत थी सर, ये अब नहीं बनी है इसी प्लान से, पहले से एक ही पंचायत थी ये चार गांव की।
1: डॉक्टर वीरेंद्र सर अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो एक कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। ललित जी लिख रहे हैं हर गांव को सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बनने की तरफ ध्यान देना चाहिए, पानी मिट्टी और हवा इन तीनों रिसोर्सेज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही लिखते हैं कि एक कंप्लीट प्लान हो जहां पर गांव पर, जो गांव पर एप्लीकेबल हो सके बेसिक सा, वो बनाया जाए, वो बनाया जाना चाहिए। टीम वीरेंद्र सिंह चौहान इस पर काम कर सकती है क्या? जी अभी वीरेंद्र जी आएंगे वो इस सवाल का जवाब दे देंगे। गुरविंदर जी आप मुझे ये बताइए कि
4: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि चार गांव का जो पंचायत थी पहले, जब जो इकट्ठी थी पंचायत तब इनके पास जमीन थी?
2: थी जी, वो दूसरे गांव में ही थे, बड़ी खजूर पंचायत थी जी चार गांव की।
4: चार गांव की पंचायत थी ना, उसके पास कितनी जमीन थी तब?
2: 7-8 एकड़ के करीब थी जी चारों गांव की।
4: 8 एकड़ चारों गांव की थी ना, तो फिर 2-2 एकड़ तो बनती है ना जमीन।
2: हदबस्त नंबर अलग हो गया ना जी उसका गांव का।
4: चाहे हदबस्त नंबर अलग भी हो जाता है, लेकिन जो गांव किसी गांव से मतलब अलग सेपरेट बनता है उसको, वो जो उसका मूल गांव होता है उसमें से हिस्सा मिलता है जमीन का। जैसे एक बाप के चार बेटे हैं वो आप ले सकते हैं, उसके लिए आप कार्रवाई कीजिए। क्यों, जो नए गांव है ना इसका जो बंटवारा है जमीन का उसके लिए समय तो लगता है, लेकिन अगर आपको 2 एकड़ जमीन उस गांव को देनी पड़ेगी, चाहे उसके मतलब उसमें पैसे दें उस जमीन के या कहीं अदला बदली करके आपको उसको जमीन आपको 2 एकड़ देनी पड़ेगी। आप इसके ऊपर थोड़ा फॉलोअप कीजिए इस चीज का, क्यों जब 8 एकड़ जमीन थी तो 8 एकड़ में से चार गांव जो बसे उनको 2-2 एकड़ जमीन उनका मतलब हिस्सा बनता उसमें से,
1: या अगर वो जमीन दूसरे गांव में आई तो उस गांव के बदले उस वो जगह अपने गांव में मिल सकती है अगर कोशिश की जाए।
4: हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी
0: अजमेर जी क्या है जमीनी स्थिति जरा दोबारा बताओ इसको।
2: अधवस्त नंबर अगर किसी गांव का अलग है तो उसको जमीन से हिस्सा नहीं मिलेगा सर, अगर अधवस्त नंबर एक ही है तो उस गांव को हिस्सा मिलेगा। हमारे यहाँ एक सदरपुर पंचायत से भरतपुर पंचायत एक ही अधवस्त है और तारपुर का अलग अध्वस्त नंबर है, उसको हिस्सा मिला है, तारपुर को नहीं मिला है। और इसी में भी गड्डी गुजरान में मलिकपुर का अध्ययन एक ही अध्वस्त नंबर है, बस ये अकबरपुर का अध्वस्त नंबर अलग है सर, तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। डेरा प्रेमरंग है उसका भी अध्वस्त नंबर अलग है, अध्वस्त नंबर एक हो तो हिस्सा मिलता है सर, अध्वस्त नंबर अलग हो तो उसका हिस्सा नहीं मिलता।
0: तो आपका आपका अध्वस्त नंबर अलग था?
2: अलग है सर, बसी अकबरपुर का।
0: तो बसी अकबरपुर को, बसी अकबरपुर को विरासत में कोई जमीन पुरानी ज्वाइंट पंचायत में से मिलने की कोई गुंजाइश नहीं?
2: नहीं है जी।
0: अच्छा, इस समस्या का समाधान करने के लिए विधायक जी के पास, स्पीकर साहब के पास भी गए क्या कि जी कोई राह गोर कटवा दो?
2: गए हैं सरपंच साहब, जमीन का तो अलग ही मैटर है। जमीन के लिए 40 MLD के लिए लिखा था तो उन्होंने फिर वही फिर बात आ गई जी, ट्रीटेड पानी ही जाएगा 40 MLD में भी, ट्रीटेड के लिए जगह नहीं है। वो तालाब भी सारा 2-2.5 कनाल का है जी, छोटा है, हाँ जल्दी और फ्लो हो जाता है।
0: तो फिर समाधान क्या नजर आ रहा है आज की तारीख में? मान लो आज इसी पे थोड़ी देर मंथन और कर ले हम 2 मिनट। रस्ते के हैं, के करा मैं, के करूं आप, के करो सरपंच साहब, के करें हमारे
2: तो।
0: हाँ जी,
2: पानी निकलवाते हैं सर, पानी निकलवाना ही समाधान है।
0: हाँ, लेकिन पानी पानी जो आप गंदा पानी खेतों को दोगे ये समाधान का है? ये तो नई समस्या खड़ी करने वाली बात है।
2: किसान मांगते हैं वो गांव की समस्या को देखते हुए जी, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, फिर वो कहते हैं भाई निकाल दो।
1: पर सर ये वीरेंद्र सर, ये एक परमानेंट समाधान तो नहीं हुआ? और
0: नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये न केवल अस्थाई समाधान है अपितु ये कानूनी दृष्टि से
1: सही नहीं है।
0: अगर इसको नापोगे तो सही नहीं है ये समाधान।
1: जी जी।
0: मैं एक तो अजमेर जी नोट करिए इस बात को, अगली बार जब आपकी ग्राम सभा हो तो आपने मुझे जरूर न्योता देना है।
2: ठीक है सर,
0: मैं आपके गांव की संसद की बैठक में मेहमान बन के आना चाहता हूं और इस समस्या पर भी बात करेंगे। जो और भी गांव के मसले हैं उन पर हम उस दिन फिर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, ये ग्राम सभा आखिरी बार कब की थी आपने?
2: ये फरवरी
1: में। वीरेंद्र, वीरेंद्र सर जब तक ये उत्तर देंगे, एक प्रश्न आपके लिए आया है। ललित उत्तम लिख रहे हैं, एक कंप्लीट प्लान हो जो हर गांव पर एप्लीकेबल हो सके और बेसिक सा वो बनाया जाना चाहिए। टीम वीरेंद्र सिंह चौहान क्या इस पर काम कर सकती है?
0: हाँ नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी, हमारा ललित भाई, आपको एक बार फिर से राम राम। ललित जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ललित भाई मैं आपको बताऊंगा, हम अगर ये ग्राम पंचायत हमें HIRD को औपचारिक रूप से एक चिट्ठी लिख देगी कि हमारे गंदे पानी की निकासी का जो मसला है वो बड़ा जटिल हो गया है, पेचीदा हो गया है, इसका कोई रास्ता समाधान, तकनीकी समाधान निकालने में हमारी मदद करिए, तो हमारे यहाँ हमारी टीम में हमारे साथी हैं संदीप जी जो इस विषय पर खूब काम करते हैं, हरियाणा सरकार के अलग अलग जो मामले हैं उनमें भी उनकी सेवाएं सरकार लेती है, NGT में जो कुछ केसेस वेसेस चल रहे होते हैं, और जो कचरे के निस्तारण संबंधी मामले हैं उनके वो एक तरह से विशेषज्ञ हैं। तो ये एक एक चिट्ठी हमें भी भेज दो अजमेर भाई, गांव की ओर से समाधान करने में हमारी मदद करी जाए। और हाँ, जो ललित जी ने कहा, हम ऐसे मामलों में वैकल्पिक प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि सब गांव में पानी की निकासी का विषय तो है लेकिन बहुत गांव में जमीन का मसला नहीं है। लेकिन जैसा इस गांव में बसी में संकट है कि जमीन है नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट बना नहीं सकते, अनट्रीटेड वाटर को पड़ोसी गांव लेगा क्यों, और हम अनट्रीटेड पानी को इसलिए मजबूरी में खेत में चला रहे हैं जो कि अपने आप में एक अपराध जैसी बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसमें टेक्निकल इंटरवेंशन क्या हो सकती है? जो ललित जी ने कहा, हमारी टीम, हम सब मिलकर इस पर भी काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुरविंदर जी, आप गांव की सरपंच महोदया भी अभी नेपथ्य में, क्योंकि सेक्रेटरी सामने है तो सरपंच साहिबा जो है वो दूसरे आसन पे चली गई हैं, आपके पास भी कोई सवाल अगर आपके मन में इस समय आ रहा हो जो इन दोनों मेहमानों से पूछने वाला है वो पूछ लीजिए। एक सवाल मेरा है, इस गांव में पिछले 12 सालों में हरियाणा में वर्तमान सरकार को बने हुए करीब करीब 12 बरस हो रहे हैं, इस अवधि में सबसे अच्छे दो काम जो हुए हैं, तीन काम जो हुए हैं जिसकी लोग तारीफ करते हैं कि यार यो बढ़िया काम हो गया हमारे गांव में, ऐसे कामों का उल्लेख कर दीजिए जरा अजमेर जी, फिर अगला सवाल आपसे पूछेंगे। शायद प्रीतम जी, गुरविंदर जी अपने हथियार पहने करके सवाल तुड़ीर में से निकाल के आपकी तरफ फेंकने वाले हैं।
2: एक तो बम का टाल, गांव में बम का टाल बना है 12 सालों के बीच, बहुत बढ़िया बना है। गांव के विवाह शादी समारोह संपन्न होते हैं, गांव के बैठने के लिए जगह बनी है, 40x80 गांव है जी।
0: कितने पैसे लग गए होंगे
2: इस पे? सर 50 लाख से ऊपर रुपये लग गए जी।
0: कब बन के तैयार हो गया था
2: ये? 7-8 साल हो गए जी तैयार हो गया था।
0: इसकी संभाल भी करते हो क्या? साफ सुथरा है अभी भी? 7-8 साल में मैला तो नहीं कर दिया?
2: बिल्कुल साफ सुथरा है सर, बिल्कुल पेड़ पौधे, लेकिन इसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया है, इंटरलॉकिंग टाइल लगाई है।
0: अच्छा, और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हो?
2: मेंटेनेंस तो गांव का स्वीपर है जी, वो सफाई करता है, जब गांव की सामूहिक सफाई होती है तब भी सफाई करते हैं।
0: ठीक है, और जो जो इसका उपयोग करते हैं लोग, उनसे कुछ लेते हैं छोटा मोटा चार्ज?
2: वो सफाई करवा देते हैं सर, और चार्ज नहीं लेते कोई भी।
0: निशुल्क मिलता है?
2: निशुल्क जी।
0: और बिजली का खर्चा?
2: बिजली पंचायत बिल भरती है सर।
0: पंचायत की आमदनी कितनी है साल भर की अपने साधन से? ऑन सोर्स
2: कुछ नहीं है सर, जीरो है।
0: ऑन सोर्स जीरो है, और बिल भर दो बैंकेट का, कब तक चलेगा न्यू काम?
2: भाई ये जो FFC SFC आती है सर, इनसे ही चलता है।
0: ऑन सोर्स क्या हो सकते हैं आपकी पंचायत में?
2: ऑन सोर्स तो जी पंचायत की जमीन है नहीं, तालाब छोटा है, उसमें भी गंदा पानी है, उसको भी पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। और तो सर ये फेरी वाला है पैग लाकन, और उसमें थोड़ा बहुत हो सके।
0: आमदनी के, गांव की पंचायत की आमदनी के अपने संसाधन हो, इस पर थोड़ा मंथन करिए, क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ये मुझे लगता है करने का काम है अभी, सोचने का, करने का। प्रीतम जी, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और गुरविंदर जी के लिए अभी मैं मैदान खुला छोड़ रहा हूं। भारत जी तो इस कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं। मैं आप लोगों से इजाजत दूंगा, क्योंकि मुझे 5 बजे भिवानी में एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसमें एक बार वहां के प्रतिभागियों से रूबरू होना है, और मुझे अगर आप अनुमति दे देंगे तो मैं एक आध गिलास पानी का पी लूंगा इस बीच में, मुझे तीसरे कार्यक्रम में जाने से पहले ब्रेक मिल जाएगा। राम राम हरियाणा में आज मुझे बीच में दे दीजिए अनुमति, मैं सबको राम राम कहते हुए अगले अंक में, यानी अब तो सोमवार को होगा
1: जी। सर आपको, सर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको हर जगह पहुंचना जरूरी है, आप वहां पहुंच के भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप किसी गांव का आपको न्योता मिले तो आप जरूर हमें भी बुलाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे ताकि गांव की रूपरेखा देख सकें। आपके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं, और बाकी यहां का काम हम जरूर संभाले हुए हैं, संभालते रहेंगे, आप साथ रहते हैं तो और अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। मैं सरपंच सरपंच जो मैम है उनसे बात करना चाहते हैं, और उससे पहले बैठिए आप अभी, उससे पहले प्रीतम जी और गुरविंदर जी आपसे कुछ जानना चाहें तो प्रीतम जी आप।
3: राम जी, मेरा सेक्रेटरी साहब से कोई सवाल नहीं है, बस एक ही सुझाव है, अगर जो गंदे पानी का निकासी है, अगर इनके पास यहाँ कोई ड्रेन है नजदीक से तो वहां तक पाइपलाइन दब के बड़ी वो गंदा पानी की निकासी हो सकती है, इसके लिए कोई प्रस्ताव अगर नजदीक 2-4 किलोमीटर है तो वहां निकाला जा सकता है।
2: 2-4 किलोमीटर नहीं सर, एक किलोमीटर के नजदीक है, लेकिन उन्होंने ट्रीटेड वाटर डालने के लिए बोला है, और जो गांव डाल रहे हैं उनको नोटिस भेज रहे हैं वो NGT वाले कि गंदा पानी क्यों डाल रहे हो, ट्रीटेड वाटर ही डाला जाता है उसमें भी, उसके लिए मना कर दिया उन्होंने पानी डालने के लिए। ये तो जो साथ लगते मलकियत है जिसकी, वो अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए पानी को ले लेते हैं कि भाई इसमें खाद कम डालना पड़ेगा, इसमें पेस्टिसाइड।
3: साहब जमींदार तो ले लेगा खेत की पैदावार बढ़वाने खातर, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा, जब गांव का पानी आएगा, जब ना तो जमींदार लेगा और ना पानी का निकासी होगी, तो सारे गांव डूब जाएगा। इसके लिए बंदोबस्त करना अभी पड़ेगा, और इसके लिए सेक्टरी और पंचायत ने ही काम करना पड़ेगा। आप प्रस्ताव दो उसको, एक नॉर्मल सी पानी का, अगर आप वो साथ ज्यादा फिल्टर नहीं होता, आपके पास कड्डे हैं, उन कड्डों में थोड़े डूंगे बना बना के पानी अगर ऊपर नीचे जाएगा तो कुछ हद से वो साफ हो जाता है। ओदिया बना बना के करोगे तो आप।
1: प्रीतम जी क्या, प्रीतम जी जैसे,
4: सेक्टर साहब जैसे,
1: एक मिनट गुरविंदर जी, प्रीतम जी जैसे ललित जी लिख रहे हैं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्या गांव में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान के लिए सरकार सहयोग नहीं करती? जी सचिव जी
2: सहयोग करती है सर, लेकिन जमीन भी तो होनी चाहिए बनाने के लिए।
1: सचिव जी पर हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा जा सकता है, जब तक आपकी वहां पे ड्यूटी लगेगी, जो सरपंच जी है उनको भी गांव के बारे में सोचना चाहिए, वो एक राय बनाए। जब आप वहां पर ग्राम सभा करते हैं एक राय बनाए, कुछ लोग सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होता कि गांव में हर कोई हठधर्मी करके कि नहीं जी हम जमीन नहीं देंगे, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो काम समस्या ही रहेगी। जब सरपंच बनते, मैं सरपंच जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब ये समस्या गांव में है तो इसका समाधान तो उनको निकालना पड़ेगा, तभी जब अगली बारी होगी तो उनको भी मौका दिया जाएगा दोबारा, जब वो समस्याओं का समाधान करें। अगर वो इंतजार करेंगे समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो, खुद हो, फिर तो कोई भी कर सकता है। तो सचिव जी आपका क्या सहयोग रहेगा सरपंच जी के लिए कि आप गांव में एक समन्वय बनाए, चाहे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगवाएं, उसके लिए जमीन को अर्जित करें या इसका समाधान करें?
2: तो गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए गांव में ग्राम सभा करके उनको
1: फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बजाय हम उनको ये कहें कि ये गांव की उन्नति की बात है, किसी न किसी तो आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। गुरविंदर जी आप कुछ कहना पूछना चाह रहे हैं? गुरविंदर जी
4: अजी सेक्टर साहब एक तो बात यह है, जैसे भरत जी बोल रहे हैं ना, मैं भी आपको बोले बोला है कि अगर कोई दान देता है ना जमीन, उसके पीछे उसका एक ही मोटिव रहता है कि मेरे पिताजी के नाम या मेरी माता जी का नाम वहां पे लिखा जाए। जैसे हमारे पंजाब में कई ऐसे गांव में ऐसा हुआ है, जैसे स्कूल के लिए कमरों के लिए जगह दी है या हॉस्पिटल के लिए जगह दी है, उनका एक ही होता है कि हमारे जो पूर्वजों का नाम है उसके नाम के ऊपर नाम रखा जाए, खाली वो यही चाहते होते हैं, पैसे की उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे परिवार होते हैं हर गांव में, उनको खाली मोटिवेट करने की जरूरत है। दूसरा जो आप जो बैंकट हॉल है जो आपका, उसका आप कोई किराया वगैरह लेते हैं, जो वहां पे शादी वगैरह होती है उसके कोई चार्जेस रखे होंगे?
2: तो यहाँ नहीं सर, कोई किराया नहीं लेते।
4: और उसके लिए आप ग्राम सभा की मंजूरी से कुछ ना कुछ चार्ज वहां पे लगाएं, नहीं तो ऐसा होगा कि जो आपकी 50 लाख की वो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए भी वो मतलब कोई पैसा नहीं होगा, तो वो ऐसे बिना पेंट के या बिना साफ सफाई के वो खराब हो जाएगी। उसके लिए आप कोई चार्ज तय करिए, जैसे कोई खुशी का प्रोग्राम है उससे थोड़ा ज्यादा रखिए और गमी के प्रोग्राम में कम रखिए। वो सवेच्छा से भी जो वहां पे बरात आती है, कोई खुशी का कोई प्रोग्राम होता है, वो जितना दो देना चाहे वो आप उनसे को लीजिए, इसको फ्री में मत दीजिए। दूसरा और भी होता है कि अगर आपके गांव में कोई इंडस्ट्री है, कोई भट्ठा है, कोई पोल्ट्री फार्म है, कोई ऐसा जहां वो कोई कमाई कर रहे हैं, उनमें भी एक हमारा होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जितना उनका मुनाफा होता है उस फर्म का, उसका 2-2.5% जो पैसा है उसके बेनिफिट का, प्रॉफिट का, वो उसी गांव में लगाना होता है, वो भी आप ले सकते हैं इस चीज के लिए। दूसरा आपके गांव में कोई चीज बेचने के लिए आ रहा है, जैसे आप वो जिन गांव में नई आमदन होती है ना, तो उसके ऊपर भी वो टैक्स लगा सकते हैं। कोई आपके गांव में होर्डिंग बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, किसी कंपनी की मजदूरी कर रहा है, आप उसको भी फ्री में वो करने ना दे, उसके लिए ग्राम पंचायत उनसे कोई मतलब पैसे ले सकती है, ये मतलब आप ये चीजें कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सरपंच साहब को और आपको भी और गांव के जो कुछ लोग हैं कोई आपके गांव के एनआरआई होंगे उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए, कोई 80 पोस्टों से रिटायर होंगे या काम कर रहे होंगे, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा करके, कई लोग ऐसे होते ना जब उनको होता है कि हमारा नाम आएगा, जैसे हमारे गुरुद्वारा साहब बनता है, मंदिर बनता है, उसको खाली एक पत्थर पे नाम लिखाने के लिए जब आप एक 11,000 वाला लिख देते हैं ना, तो एक प्रेस्टीज इशू होता है, दूसरी फैमिली कहती है कि हमने ऊपर नाम लिखवाना, वो 1,00,000 रुपया देता है। इन चीजों को ले कोई ऐसी आपने अपने गांव में कंपेन या ऐसा कोई मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा, मुहिम छेड़नी पड़ेगी जिसमें लोग दान के रूप में आए, और जमीन का फिर आप जमीन के लिए की बोलिए कि ये हमारे गांव की विकास का या हमारे गांव की समस्या को हमने हल करना है, तो हम बाहर का कोई गांव आपको जमीन नहीं देगा, ये तो सभी हम जानते हैं ना, कोई आपका पानी भी नहीं जाने देगा, गंदा पानी वहां पे
1: जी।
4: लेकिन जो अगर आपके गांव की जमीन है जो गांव के साथ लगती हो, वो जब आप मोटिवेशन उनको लोगों को देंगे कि हमारे गांव में इससे बीमारियां फैलेगी, अगर आपके पास जमीन है चाहे आप थोड़ा उनको पैसा कम दे दें ना, जो रेट है वहां से कम दे दें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस चीज को आप इसके ऊपर सहमति बनाइए अपने ग्राम सभा में। दूसरा सरपंच साहब बैठे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं।
1: मैं भी चाह रहा था, कुछ मिनट्स बच गए हैं, सरपंच जी से बात करेंगे। गुरविंदर जी मैं एक बार सरपंच जी से बात करना चाहूँ। सरपंच साहब आपसे जो इतनी भी आ रही इस प्रोग्राम में जो आज आपके गांव के बारे में बातचीत हुई, सेक्रेटरी साहब आपके साथ हैं, मैं आपसे एक चीज सुझाव देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको करिए। आप इस समय सरपंच है, अगर गांव में पानी की निकासी की दिक्कत है या सड़कें जो गलियां अच्छे से नहीं बनी है या पानी जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर आप गांव के लिए इस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तो आने वाले दिनों में आपको फिर ये दायित्व जो है वो मिलना हो सकता है असंभव हो जाए। तो उसके लिए हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे जा सकते हैं। आपके साथ जो सचिव जी हैं, आप डिमांड करिए, आप उनसे कहिए, वो सरकार से बात करें, आप उनके साथ गांव वालों के साथ जाइए, आप सरकार के ऊपर आपको गांव की तरफ से दबाव बनाना होगा, और साथ में आप जब ग्राम सभा करेंगे तो आपको उन लोगों को चिन्हित करना होगा जो गांव में ऐसे लोग हैं जो अब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जो जमीन के लिए पैसा देना चाहते हैं या कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है, वो आपके गांव को आगे आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत सरपंच जी आपको करना पड़ेगा और सबको साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि आप अगली बारी ये कह सकते हैं कि ये गांव की समस्या थी जिसका हमने समाधान किया। और कुछ समय बच गया है, गुरविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे।
4: सरपंच साहब एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो महिला सदस्य कितने हैं आपके पास जो आपकी पंचायत में है?
5: चार जी।
4: चार, वो आते हैं मीटिंगों में?
5: हाँ जी, हर
4: मीटिंग जो मीटिंगें होती है ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की उसमें आते हैं?
5: आते हैं ग्राम सभा की भी और जो हमारी पंचायत होती है उसमें भी।
4: और दूसरा औरतों के लिए जैसे अभी जो स्वयं सहायता समूह का है उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, वो कितने हैं आपके गाँव में?
6: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहवा की आवाज FM भारती। और
4: अब आप सुन रहे हैं भारती
5: FM। 10-12 ग्रुप है सर।
4: 10-12 ग्रुप है, वो कोई काम कर रहे हैं?
5: हाँ जी।
4: क्या काम कर रहे हैं
5: ये जी? अपने वो मैंने बोला था जैसे अचार सिलाई इस तरह हाँ। के अपने हैंडलूम कार्य करते हैं, वुलन के करते हैं, बच्चों की ड्रेस बनाते हैं, इस तरह के जो काम है सभी जुटे हुए हैं,
4: मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो। उनको भी थोड़ा मोटिवेट करके आगे ले जाने का जत्न कीजिए। दूसरा ये जो आपके पानी की समस्या है ना, मतलब निकासी की समस्या, इसके लिए आप सारे गांव की बैठ के जो 80 लोग हैं, सभी लोग ऐसे नहीं होते कि आपके मतलब बिघन डालें काम में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको होता है कि हमारी आने पर बड़ी जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रहें, उन लोगों से बात कीजिए, कोई सदस्य से सहायता देना चाहता है उससे लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जाकर जमीन का टुकड़ा आपको दान करना चाहता है उसके लिए आप गाँव में एक ग्राम सभा में मतलब सहमति बनाइए ताकि जो आपकी समस्या का जो निदान हो सके। नहीं तो ऐसा है चलो बिल्डिंग तो आप बना देंगे, जैसे लाइब्रेरी की बिल्डिंग बोल रहे हैं कि स्कूल के ऊपर बन जाएगी, लेकिन जो गंदे पानी के लिए उसके लिए आपको जमीन लेनी पड़ेगी।
1: गुरविंदर जी
4: अगर जमीन होगी,
1: गुरविंदर जी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, कुछ कमेंट्स लेने बहुत जरूरी है। और
4: लीजिए लीजिए
1: ललित उत्तम जी कह रहे हैं बेबाक गुरविंदर जी, और माही अरमा लिखते हैं कलसाना का भी बहुत बुरा हाल है, कोई ना सुनवाई है यहाँ पे। ये कलसाना कौन सा गांव है गुरबिंदर जी, देखेंगे अगर वहां के सरपंच को जोड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में तो वो कर सकते हैं। ललित जी लिख रहे हैं वेरी वेल प्रेजेंटेड प्रोग्राम, और साथ में भारत जी, गुरबिंदर जी और प्रीतम जी का धन्यवाद। सरपंच साहिबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लगे रहिए, राम राम हरियाणा। सरपंच जी आपसे आखिरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे, जो हमने आज कार्यक्रम में सुझाव दिए उसके बारे में आप थोड़े से शब्दों में बताइए कि आप आज इस कार्यक्रम के बाद क्या निश्चय करने जा रही हैं।
5: मैंने जी आप बहुत कुछ सीखा है, आपने क्या क्या बोला है मेरे नॉलेज में आज, और मैं अपने गांव के विकास के लिए और ज्यादा जागरूक होंगे।
4: और जो हरियाणा के दूसरे महिला सरपंच है उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप
1: जी? आप क्योंकि आपको हर जगह सुना जा रहा है, जितने
4: जो दूसरे महिला सरपंच आप जैसी बनी हुई हैं हरियाणा में पूरे में स्टेट में, क्यों
5: बने तो भी मेरा निरोध है कि वो भी अपने गांव में खूब तरक्की करे, खूब नाम करे जी।
1: प्रीतम जी आखिरी राम राम हरियाणा क्या आप कहना चाहेंगे आखिरी में?
3: भारत जी समय बहुत हो चुका है, मैं तो सभी को पैनलिस्ट को और सभी श्रोता दर्शकों को मैं तो राम राम बोलना चाह रहा हूँ, सभी को राम राम।
1: सभी को मेरी ओर से भी राम राम, और हम इस कार्यक्रम राम राम हरियाणा में अब मिलेंगे सोमवार को, क्योंकि हमें शुक्रवार माफ कीजिएगा शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती है। अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार को शाम के 4 बजे, तब तक के लिए सभी श्रोताओं और सभी को राम राम हरियाणा।
4: राम राम
3: राम राम हरियाणा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बाता है।
1: तो गजल पेश है, दुनिया कहे बुरी है, दुनिया कहे बुरी है ये बोतल शराब की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हमाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश मराठ।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तप कर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, टूटते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की तरह।

झील जो बरसों से बस गई है, उसके सीने में जागती है तमाम रात। झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

जी हाँ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हम प्रसारण करते हैं अंबाला छावनी से, और ये सामुदायिक रेडियो का लाइसेंस भारत के सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से अंबाला के लिए मिला है। और हम बात करते हैं अंबाला की, जो सुना जाता है फ्रीक्वेंसी एफएम 90.0 पर अंबाला में और विश्व में। मोबाइल पर सुना जाता है या नेट के द्वारा। हमारा एड्रेस है webplayer.radiovidasta.com। आज के लिए बस इतना ही। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02 और 32 सेकंड। पर जाने से पहले आपके साथ हम हर दिन किसी खास विषय पर बात करते हैं और कुछ पंक्तियां भी सुनाते हैं और साथ में कल के कार्यक्रमों का विवरण भी देते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। अब समय हो चला है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ यानी आपके अपने रेडियो वितस्ता के आज के इस सुरीले और ज्ञानवर्धक सफर को यहीं पर विराम देने का। उम्मीद है आज का दिन और हमारे तमाम कार्यक्रम आपके दिल के करीब रहे होंगे। पिछले हफ्ते से हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जो लाइव होता है हमारे फेसबुक पेज पर और साथ में सामुदायिक रेडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। कार्यक्रम का नाम है भगवत गीता जीवन का आधार। आज हमने इसका दूसरा एपिसोड किया और हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारा प्यार इस कार्यक्रम को मिला। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए और खास करके मेरे लिए यह है कि हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता जी को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो सपोर्ट और इसका जो हमारे जो श्रोता है सोशल मीडिया पर और हमारे रेडियो के श्रोता है, उन सभी ने इसको सराहा है। उम्मीद करेंगे कि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे हर शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे से। अगले शुक्रवार 19 जून को किसी कारणवश बाहर होने के कारण हम ये शो अगले शुक्रवार को यानी 26 जून को करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इंतजार करेंगे और हम भी इंतजार करेंगे। हमारे साथ कोई नया मेहमान होगा और उनको आपसे रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, आज 12 जून का ये दिन बेहद खास और संवेदनशील है। आज भारत समेत पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, मासूम बच्चों के साथ और मासूम बच्चों के हाथों से औजार छीनकर उन्हें किताबें थामना, बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने और उनकी शिक्षा व अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना। बच्चे हमारे देश का, हमारी इस दुनिया का आने वाले कल हैं। उनके हितों की रक्षा करना, उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी आवाज के माध्यम से समाज में ये सकारात्मक बदलाव ला सकें। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि किसी भी बच्चे का बचपन मजदूरी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये था आज का विषय और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ में प्रसारण के समापन पर यानी प्रसारण को विराम देने से पहले इस खूबसूरत सोच और वितस्ता की लहरों के नाम आज की ये चंद पंक्तियां हर दिन की तरह ये आप सभी को समर्पित है। पंक्तियां यूं है, छीन कर हाथों से औजार बच्चों को अब ज्ञान देना है। छीन कर हाथों से औजार बच्चों को अब ज्ञान देना है। हर मासूम के मुरझाए चेहरे को एक नया आसमान देना है। बहती रहे उम्मीद बनकर समाज में रेडियो वितस्ता की ये लहरें, बहती रहे उम्मीद बनकर समाज में रेडियो वितस्ता की ये लहरें कि हर बच्चे को इसका बचपन और उसका सम्मान देना है, कि हर बच्चे को उसका बचपन और उसका सम्मान देना है। ये थी आज की पंक्तियां। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 13 जून 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है।
5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से और लाएंगे एक प्रकाश प्रवाह आपके लिए और साथ में पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6:00 भक्ति संगीत, 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहाना सफर, माफ कीजिएगा सुनहरे पल एपिसोड 3 हेमलता पर तैयार किया गया कार्यक्रम और 8:30 पर आप सुनेंगे किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 2 सावधान और समझदार बने। 9:30 मिले जुले गीत कार्यक्रम का शीर्षक होगा इंतजार। 9:30 के बाद 10:00 तैरते बादलों में एक शाम पेश करेंगे नरेश शर्मा और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6:00 भक्ति संगीत, शाम के 6:30 शाम में गजल और 7:00 रेट्रो हिट्स एपिसोड 11 और 8:30 आप सुनेंगे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है कुछ लम्हे तुम्हारे नाम। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ अब रेडियो वितस्ता की पूरी टीम और मुझे यानी भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी नई ऊर्जा, नई गानों और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुबह 6:00 से 9:00 तक। कल सुबह 5:58 पर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।